सद सदा सहाय दातार दियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार।

0: त्रासी सो सेव सेवा करे जिसमें हुक्म मनाए सी हुक्म मनाए होए परमाता खसमे का मैल पाए सी खसमे पाए सो परमन सुजा सो फल पाए सी कादर के पैदा जाए सी कादर के पैदा जाए सी
1: हुई गावे रा

0: ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ ਆਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਸ ਕੁਝ ਕੁ ਪਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन 10 तारीख तक चलेगा। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। आईएमसी 2026 का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। ये डिजिटल नवाचार अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी आधारित विकास में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को गुजरात के वडनगर से शुरू हुई बाइक सेवा यात्रा भी कल काशी में संपन्न हो गई है। महिला और बाल विकास विभाग का 2 दिन का शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आयोजित विभागीय सम्मेलनों की श्रृंखला का दूसरा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और महिला तथा बाल विकास से जुड़े कामों को और प्रभावी बनाना है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और

0: लागत को कम करना है। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने तथा वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों पर रोक लगाने के उपायों का आह्वान किया गया है। 15 भागीदार देशों द्वारा हस्ताक्षरित ये संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय USTR ने कल रात जारी किया। बयान में देशों ने बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजार नीतियों का समाप्त करने सहित संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन को खत्म करने के उपाय करने का आह्वान किया। आज वायुसेना दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष वायुसेना दिवस की थीम है इंडियन एयरफोर्स इनफेलेबल इम्प्रेटेबल एंड प्रिसाइज, यानी अचूक, अभेद्य और सटीक। वायुसेना दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से अपने संदेश में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। चाइना ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आज महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। कैरोलिना मुचाबो का सामना निकोला बार्तुनकोवा से होगा, वहीं मीरा एंड्रीवा का मुकाबला एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा से होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत।

सी 32 संगीत दा प्रोग्राम आराधना मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। सवेर दे 6:30 होए ने पेश जी प्रोग्राम खेतीबाड़ी आज दा प्रोग्राम।

0: जय हिंद जी, संधु साहब बचाले।
1: जय हिंद जी, जय हिंद। रुड़िया राम जी, सुनाओ की हाल चाल है?
0: हाल चाल तगड़ा, चंगा, शुक्र मालक दा। देखो खेती बाड़ी दे बेच बहुत ज्यादा जेरी गंभीर चीज सोचने वाली है, वो है खेती खर्चा। खेती खर्चा साडा हमेशा असीं देखदे आ कि उपर दी जा रहा है, इस करके इहदे च तवज्जो देण दी लोड़ है। जे सानूं सरकार कर्ज दीआं सहूलतां दिंदी है, सबसिडियां दिंदी है, इहदा मतलब इह नहीं कि कर्जा जरूर ही लैणा है। जे लोड़ है, जिस कम लई लोड़ है, उहदे लई तां कर्जा लैणा कोई मतलब माड़ी गल नहीं है। पर अज संधू साहब फिक्र इस गल दी है कि जिहड़े कम लई सानूं पैसे दी जरूरत हुंदी, असीं उस कम लई पैसा नहीं लैंदे, दुर्वरतों करते
1: या किसी होर पासे वरत लैने,
0: होर पासे वरत लैने। सो ये जड़ी चीज है किते ना किते किसानी दे हिस्से जड़ी माड़ी चीज है, क्योंकि फिर किश्तां नहीं लैंदियां, कर्जा वापसी नहीं हुंदी, ते फिर जिमीदार जड़ा है करसाद विच औखी घड़ी चलिया जांदा है। सो कोशिश करनी चाहीदी है कि कर्जा एक जिदा आपां सियाणे कहिंदे मिठा जहर है, लो जिन्नी लोड़ है, जिस काम लई लोड़ है, नहीं ते गुरेज परहेज करना बेहतर रहिंदा है।
1: खास करके देखो नाल कर्जे नाल राम जी के वादो दी खेती मशीनरी खरीदना वे एक तरह ना बोझ ही है,
0: ये कर्जा चढ़ाउण दा ही कारण वड्डा कारण तां पंजाब
1: दा जी ये कि हर पास हर मशीनरी मेरे कोल होवे, ये ना ता संभव है ते ना ही फायदेमंद है।
0: फायदेमंद
1: कुछ मशीनरी जिहड़ी देखो आपां लै सकदे आ, जिहड़ी कि सानूं पता भी 12 महीने 30 दिन काम आउणी है, ते जिहड़ी साल छमाही काम आउणी है, कोई महीने 2 महीने चलनी है, जे वो किराए ते मिल जाए ते वो चंगी गल है, बजाय कि उहनूं आपणे खरीदण दे।
0: देखो जोत दे लिहाज नाल पहले तां इह देखो कि मेरे कोल जोत किन्नी है, मेरे कोल कम किन्ना है, एक साल दे विच मशीनरी तों मैं कम किन्ना लैणा है। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ

सीजी अज का खेतीबाड़ी प्रोग्राम मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर के 6:40 हुए ने। आओ हुण सरवण करदे हां श्री रामचरित मानस का लड़ीवार पाठ मानस गान।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था, अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्रीराम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, तिसी आलू सब्जियां बारे डॉक्टर रुमा देवी जानकारी देंगे। होर गीत संगीत भी होएगा। 7:10 का समा होएगा जन सेवा से देश सेवा वाले। 7:55 से सुनोगे प्रोग्राम आबशार। 8:00 फिल्म संगीत ते 8:10 से साडा विशेष पेशकश। जी हां, करणवीर करण लुधियाने तो इन्हां दी पेशकश होएगी जन सेवा तो देश सेवा तक। सवेरे 8:30 माफ करना, रात 8:30 पंजाबी खबरां, 8:40 ते पंजाबी गीत, ते फिर रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च पंडित राम नारायण दा सारंगी वादन मारवा। तुहाडी फरमाइश होएगी बाद विच। लो जी, ए सी प्रोग्राम जिहड़े प्रसारित होने अज, आओ सुनदियां समाचार संस्कृत च।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना प्रशासनस्य प्रमुखरूपेण निरन्तर जनसेवां कुर्वता 25 वर्षाणि पूर्णानि कृतानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् भारतं दूरदर्शी नीतिभिः अथ कठिन परिश्रमेण च 47.5 वर्षपर्यन्तं विकसित राष्ट्रस्य स्वप्नं निश्चितरूपेण साकारयिष्यति। विकसित भारत संकल्प सभां सम्बोधयन् श्रीमोदी उक्तवान् यत् वर्तमान प्रशासनस्य नीतयः सर्वेषां नागरिकाणां कृते समाधानोपायानां प्रदाने केन्द्रिताः सन्ति।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां यशो भूमि इत्यत्र इंडिया मोबाइल कांग्रेस इत्यस्य दशम संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। ह्यः आरब्धः ह्यः अयम् चतुर्दिवसीय कार्यक्रमः दूरसंचार विभागेन अथ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इत्यनेन च संयुक्त रूपेण आयोज्यते। अस्मिन् कार्यक्रमे दूरसंचारस्य अंकीय संपर्कस्य तथा प्रौद्योगिकी नवोन्मेषस्य क्षेत्रेषु भारतस्य उल्लेखनीय प्रगतिं प्रदर्शयिष्यते। सहैव वैश्विक स्तरे सहकाराय, निवेशाय तथा ज्ञान विनिमयाय अयं कार्यक्रमः मञ्चं प्रदास्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अद्यतनाः तिष्ठन्तु, अग्रेसराः भवन्तु। एक्स पटले @AIR News Hindi अथ इंस्टाग्राम।

0: संकल्प बाइक यात्रायाः सफलतया सम्पन्ना उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य नितिन नवीनस्य उपस्थितौ गुजरातस्य वडनगरात् काशी पर्यन्तम् आयोजितायाः अस्याः सेवा यात्रायाः समापन समारोहं संबोधितवान् मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उक्तवान् यत् वडनगरात् काशी पर्यन्तमियं यात्रा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 25 वर्षीयं सेवा संकल्पं सम्मानयितुं एकः अवसरः अस्ति भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य केरल माहे तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल उत्तराखंड पश्चिम बंगाल सिक्किम चेत्येतेषां स्थलानां केषुचित् क्षेत्रेषु प्रबल वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति इति वार्ताः
1: मीडियम 343 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं सवेर दे 7 बजे ने पेश ने मुख खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली विच इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार दे मुखी वजो लगातार जनतक सेवा दे 25 साल पूरे कर लए ने जीएसटी कौंसल दी 27वीं मीटिंग आज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विच होवेगी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब दे पटियाला अते मोगा जिलियां दे पंजाब वाडा विच नवे सिरियों चोणा करवाउण दा हुकम दित्ता है भारत ने पिछले कुछ दिनों विच काले सागर खेतरां च होई हमलियां दी नखेधी कीती है पार्टी रिजर्व बैंक ने वधदी महंगाई नूं काबू करन दे लई नीतिगत रैपो दर नूं 25 बुनियादी अंक वधा के 5.5% कीता मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संगरूर जिले दे पिंड बड़वाल विच 47 करोड़ तो वध लागत वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लान दा नींव पत्थर रख्या कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा सूबे विच बागबानी नूं प्रफुल्लित करन अते किसानां नूं बेहतर सहूलतां मुहैया कराउण लई हर जायज मंग दा हल कीता जावेगा अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 3 गैंग गैर कानूनी हथियारां सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया एक नाबालिग समेत 8 मुलजमान नु 15 पिस्तौला समेत गिरफ्तार किया मौसम विभाग ने आज लई चंडीगढ़ तो इलावा पंजाब दे कई जिलियां अते हरियाणा दे कुछ जिलियां विच गरज चमक नाल हल्की तो दरमियाने मीं पैण दा येलो अलर्ट जारी किया है इस सन हुण तक दिया मुख खबरां असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं हुन पेशे जी प्रोग्राम सोनी सवेर लेके हाजिर ने शीतल ठाकुर

0: उल्फत में ताज बने, ये भी तुम्हें याद होगा, मैं भी कुछ बनाऊंगा तेरे घर के सामने।
1: देखी
0: दोनों।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: शाजिया मंजूर दी आवाज दे विच हुणे तुसीं इह गीत सुनिया। प्रोग्राम चल रहा जी सोहणी सवेर, शीतल है तुहाडे नाल। दोस्तों, साडे देश ने लगभग आजादी तो बाद बहुत तरक्की कीती है। उहदे विच सब तो महत्वपूर्ण चीजा रहियां ने जदों तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुणा ने वाकडोर संभाली। इन्हां ने अपने कार्यकाल दे विच वख-वख तरह दियां मुहिम कढ़ियां, वख-वख तरह दे मिशन तैयार किए जिहड़े कि भारत दे विकास नूं किते ना किते प्रभाव पाउंदे ने। जिन्हां दे विचों सब तो वधिया गल रही भारत दे नौजवानां दे नाल जुड़ी हुई, ओह सी स्किल इंडिया मिशन, यानी कि यूथ स्किल डिवेलपमेंट। भारत दुनिया दे सब तो वध नौजवानां नाल भरिया होया देश है। साडे नौजवानां दी ऊर्जा, योग्यता ते हुनर देश दी तरक्की दे लई बहुत वड्डी ताकत ने। इस ताकत नूं समझदे होया देश दे प्रधानमंत्री मान योग श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 जुलाई 2015 नूं स्किल इंडिया मुहिम यानी कि नैशनल स्किल डिवेलपमेंट मिशन की शुरुआत की सी। एह दिन पहला वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी सी ते मौके ते फिर नैशनल पॉलिसी फॉर स्किल डिवेलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2015 ते प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKY नूं महत्वपूर्ण तौर ते शुरू किया गया। इस मिशन की प्रमुख योजना यह सी कि नौजवानों नूं छोटे समय की स्किल ट्रेनिंग, अप स्किलिंग

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
1: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
2: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक अड़चनों को स्वचालित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपने स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचना के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्यवाही से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: ये समाचार हमारे

0: न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: जालिम लोशन,
2: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
1: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
2: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
3: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
2: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
4: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
2: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुधाबी में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुधाबी में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हुती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई।

0: और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हुती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
1: मैं इंडस्ट्री का हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वहीं का रहूंगा और वहीं अच्छा लगता है। जरूरत सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, एसी है नहीं, बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
2: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं हैं। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
3: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
4: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं जा अब्दुल।
2: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
5: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो, किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
2: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
6: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
2: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।

0: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेइचिंग में मानुष शाह और दिया चिताले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई हैं। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडप में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और

0: 26 तक पंजाबी खबरां दे प्रसारण समय विच तब्दीली कीती गई है। इस अनुसार 16 अक्टूबर 2026 तक पंजाबी खबरां हुण शाम 7:30 बजे दी बजाए रात 8:30 बजे प्रसारित कीतियां जाणगियां। सारे स्रोतियां नूं बेनती है कि कृपा करके नवे प्रसारण समय दा ध्यान रखण।
1: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। पेश है जी प्रोग्राम महक पंजाब दी। पंजाब दी मिट्टी दी महक विच ओही जादू है जो इन्हां गीतां दे विच है। बिल्कुल जी, ए गीत जिहड़े पंजाबी बोली दे नाल लबरेज ने, ए गीत जिन्हां दे विच सुरां दी फरमाइश जिहड़ी है वह अपने आप ही आके जुड़ जाती है। ए गीत जिहड़े बनदे ने साडियां पंजाबी फिल्मां दियां यादां ते उन्हां दी खूबसूरती, ते इस नाल सजिया होया प्रोग्राम महक पंजाब दी। ते आओ फिर कर दिया प्रोग्राम दा आगाज़ नरिंदर बीबा होना दे गाए इस खूबसूरत गीत दे नाल।

लो जी, प्रोग्राम चल रहा है महक पंजाब दी, ते हुणे तुसीं इह गीत सुनिया फिल्म कली झूठे दे विचों। अगला गीत ओ वी असीं तुहाडे लई चुन लिया। बिल्कुल जी, उस गीत दी वारी जिहदे विच पंजाबी मस्ती भी है, नोक चौंक भी है।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: ये आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। लो जी, लेके हाजिर हो गए आप प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल। आज दे इस प्रोग्राम दे विच सारे सुनने वालियां दा तहे दिलों स्वागत कर दिया। बड़ी खूबसूरत सफर जिहड़ा ओ चल रहा है आकाशवाणी जलंधर ते। तुसी साडा प्रोग्राम 7:02 ते सुनिया, जानकारी ते मनोरंजन भरपूर सोहनी सवेर। ते हुण अगला प्रोग्राम जिहड़ा असीं तुहानूं सुनवा रहे हां, बहुत सारे महक पंजाब दे प्रोग्राम तुसी सुन चुके हो, ते हुण अज दा प्रोग्राम गाता रहे मेरा दिल। इस

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी, अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

साहब दी शायरी नू जदों जगजीत सिंह होना दी आवाज मिली ता शब्दा नू एक होर ही रूह मिल गई। होश वालों को खबर क्या, इस मिलाप दी एक बेहद यादगार मिसाल है। एक गजल सरफरोश फिल्म दे विच आई, जगजीत सिंह दी आवाज दे विच बहुत मकबूली हुई ते इस गजल ने हर एक दे दिल दे विच अपनी थां बना ली।

0: हुणे तुसी शास्त्रीय संगीत दे प्रोग्राम सुर साधना च विदुषी किशोरी अमोनकर तो शास्त्रीय गायन सुन रहे सी राग अलहया बिलावल। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: सेबी द्वारा इन्वेस्टर जागरूकता पहल। और जानकारी लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सेबी सारथी ऐप डाउनलोड करो।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है जी प्रोग्राम हैलो फरमाइश। हैलो फरमाइश प्रोग्राम सुनन वाले नु रुपिंदर दी प्यार परी नमस्कार। जी हाँ, उही प्रोग्राम जिसे विच तुसी अपनी हैलो दे जरिए यानी कि अपनी फोन कॉल दे जरिए एंटर होना है ते दसना है अपनी पसंद दा गीत। ए गीत हिंदी होना चाहिए दा है, क्योंकि पंजाबी गीता दे लई जेकर तुसी फरमाइश पुगोना चाहते हो ते फिर तुसी सानू साडे अगले प्रोग्राम यानी कि 11 बजे आने वाले तमक जलंधर प्रोग्राम दे विच व्हाट्सएप दे जरिए मैसेज कर पाओगे ते हिंदी फिल्मी नगमिया दे इस सफर दे विच तुहाड़ा स्वागत है। ते 0181-2342-173 जी हाँ 0181 एरिया कोड दे नाल 2342-173 नंबर कर रहा है जी तुहाड़ा इंतज़ार। ते इस नंबर नू मिला के तुसी स्टडी स्टूडियोज़ दे विच पहुँच कर जाइयो अपनी आवाज़ दे जरिए ते सानू अपने नाम ते थां दे नाल दसियो अपनी पसंद दा गीत जिहड़ा तुसी सुनना चाहुंदे हो। खैर जद तक तुसी साडे स्टूडियोज़ दे विच आउणा उदो तक दे लई असी तुहाडे लई एक खूबसूरत गीत जिहड़ा ओ सुनवा रहे हां। ते लो जी इंतज़ार जल्दी दे नाल खत्म करन दे लई ते आके जल्दी दे नाल मिलन दे लई तुसी भी पूरी तरह तैयार हो जाओ 0181-2342-173 नंबर नूं मिला के।

0: दिलो जी हैलो फरमाइश प्रोग्राम दे विच अपना नाम सुनवाने दे लई हुण साडे नाल साडे केड़े स्रोते जुड़े ने जानदे आ। हैलो
1: बस गैरों को याद किया जाता है
0: जी,
1: काश मिल जाए आप जैसे अच्छे एंकर दोस्त जिन्हें अक्सर हेलो फरमाइश आकाशवाणी में याद किया जाता है।
0: ओए होए बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी।
1: पीश गुलियानी मार्केट दिलकुशा शहर जलंधर
0: जी, स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच।
1: शुक्रिया मैडम जी, मेहरबानी
0: जी। सतीश जी फोन भी मिल गया है ते तुसी बड़े वखरे अंदाज दे नाल अपनी एंट्री भी करवा ली है ते दस दे मैनू गीत केड़ा सुना दिए।
1: ये तो लाजम मैडम जी फिल्म है ब्रह्मचारी
0: जी।
1: दिल के जो रोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, जिदा फोन नहीं लगया दोस्तों मत हो उदास, मेहनत करो जरूर लगेगा जी।
0: लो जी बिल्कुल फोन मिल गया है ते गलबात हो गई है ते आ रहा है जी तुहाडी पसंद का गीत जी। शुक्रिया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री चंद्रशेखर एम्मा सानी जी, विभिन्न राज्य सरकारों के मंत्रीगण, जीएसएमए बोर्ड के सभी मेंबर्स, दुनिया भर से आए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्रतिनिधिगण, इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, देश के अलग अलग कॉलेजेस और स्टार्टअप से आए मेरे युवा साथी देवी और सज्जनों, आज 8 अक्टूबर भारत के लिए यह एक विशेष दिन है। आज के दिन को हम एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपने सभी जाबाजों

नमन करता हूं। देश को एयरफोर्स डे पर शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसे अभी सिंधिया जी बता रहे थे, कल ही मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देश की सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं। मेरे लिए ये सेवा की सहज यात्रा रही है। मैं हर देशवासी का दुनिया भर में भारत के हर मित्र का शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये भी संयोग ही है कि इसी अवसर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के सम्मेलन के भी 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इस साल जीएसएम में बोर्ड की बैठक के लिए चुना गया। मैं दुनिया भर से आए टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया और स्टार्टअप्स के आप सभी रिप्रेजेंटेटिव्स का भारत में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सुबह ही एक खबर आई है कि मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वे एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े। उन्होंने समाज में व्याप्त व्यवस्था पर अपनी फिल्मों के माध्यम से करारा प्रहार किया। वे एक ऐसे क्रांतिवीर थे जिन्होंने बुराइयों के विरुद्ध काम किया। उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, मुझे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में के कई एडिशंस में आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। टेलीकॉम सेक्टर और डिजिटल कनेक्टिविटी कैसे इवॉल्व हुई, ये प्लेटफॉर्म इसका साक्षी रहा है। 2022 में इसी मंच से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं, देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है।

और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में 10 गुना बढ़ी है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इसी मंच पर 2024 में हमने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU की मौजूदगी देखी। तब हमने डिजिटल वर्ल्ड के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पर बात की थी और पिछले साल इन्वेस्ट, इनोवेट और मेक इन इंडिया पर चर्चा की थी। आज भारत टेलीकॉम सेक्टर में जहां पहुंचा है उसमें इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बीते वर्षों में ये प्लेटफॉर्म भारत की प्रगति का, भारत के सपनों का मंच बनकर उभरा है। इसलिए मैं आप सभी का विशेष अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, इस साल आप सभी ने इस समिट में अपने मंथन के लिए विषय तय किया है, स्केल विदाउट बाउंड्रीज, हर सीमा से परे जाकर विस्तार। मैं आपको भारत के अनुभवों से बताना चाहूंगा कि हमने कैसे स्केल विदाउट बाउंड्रीज के सपने को जीकर दिखाया है। साथियों, जब हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो अक्सर नेटवर्क की चर्चा होती है, स्पेक्ट्रम पर डिबेट चलती है, टावर्स की रीच की, स्पीड की बातें होती है, लेकिन भारत के लोगों के लिए टेलीकॉम के मायने और भी रहे हैं। बीते 10-12 वर्षों में मोबाइल फोन आधुनिक कम्युनिकेशन के माध्यम के साथ साथ गुड गवर्नेंस का भी अहम टूल बनकर सामने आया है और ये हमारे डिजिटल इंडिया विजन के कोर में रहा है। साथियों, आज हम सुनते हैं कि भारत में डेटा सस्ता है, मोबाइल फोन सस्ते हैं, मोबाइल फोन यूजर बेस इतना एक्सपेंड हो गया है, ये अपनी जगह सब सच है। लेकिन ये हुआ कैसे और ये सब किया क्यों गया, ये जब हम समझेंगे तो सभी को भारत का फोकस एरिया एकदम क्लियर होगा। साथियों, एक दशक पहले तक भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी चुनौती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी एक प्रिविलेज बनती जा रही थी, यानी जिसके पास साधन है वही आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ ले सकता था। भारत में यही स्थिति बनती जा रही थी। डिजिटल इंडिया अभियान से हमने इस स्थिति को बदलने की ठानी और इसके सेंटर में मोबाइल फोन को लेकर के आए हैं। ये टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन का बहुत बड़ा प्रयास था। इसके लिए टेलीकॉम सेक्टर में हर जरूरी फॉर्म्स किए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया। हमने फोकस किया कि मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम हार्डवेयर भारत में ही बने। साथियों, ऐसे हर प्रयास से मोबाइल फोन और डेटा तक भारत के आम नागरिक की पहुंच और सुलभ हो गई और आज ये भारत के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि कैसे सब कुछ रुक गया था, लेकिन भारत में दफ्तर चलते थे, बैंक चलते रहे।

है, पढ़ाई चलती रही, ये भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के कारण हुआ। मोबाइल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी ने एजुकेशन, हेल्थ, पेमेंट और गवर्नमेंट सर्विसेज को बिना बाधा चालू रखा। आज दूर सुदूर गांव गरीब के बच्चे भी क्वालिटी नॉलेज एक्सेस कर पा रहे हैं। डिजिटल लर्निंग सबकी पहुंच में आ रही है। साथियों, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं जिससे डिजिटल इंडिया का इंपैक्ट और ज्यादा पता चलता है। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है, हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है। आप जानते हैं कि भारत भाषा और भूगोल हर प्रकार से डाइवर्स देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसके कारण लोगों के जीवन में अनेक असुविधाएं भी आती हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी ने इस डाइवर्सिटी को भी सुविधा से जोड़ा है। पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे। यानी कुछ भी काम करना हो, सरकारी सर्विस लेनी हो, तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है। आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल फोन पर है। सरकारी मदद अब सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करीब 50 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के मोबाइल में भेजे, बैंक अकाउंट में पहुंचे। और इससे करीब 5 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मुझे बताइए, जिनकी मुफ्त की कमाई बंद हो गई है, वो क्या मोदी को प्यार करेंगे क्या? मैंने सही किया कि नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस सारे गलत कामों को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो कितने चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मैं इसको ठान के बैठा हूं, करके रहूंगा। अगर साथियों पुरानी व्यवस्था होती तो सरकार का 5 लाख करोड़ रुपए
लीकेज में चला जाता

और ऐसे लोगों की जेब भर देता, मोदी ने इसको रोका है। और अब वही पैसा सही लाभार्थी को मिल रहा है और बचा हुआ पैसा सही काम के लिए उपयोग आ रहा है। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हम 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक किसानों के बैंक अकाउंट में जमा कर चुके हैं। ये राशि हर 4 महीने में जाती है और किसान को मोबाइल फोन पर ही इसका मैसेज मिल जाता है। ये पैसा उन करोड़ों छोटे किसानों तक पहुंचा है जिन तक कभी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता था। यानी साथियों, मोबाइल फोन सिर्फ चैट का माध्यम नहीं रहा, बल्कि इसने लेस ट्रैवल, लेस वेटिंग, लेस कॉस्ट, मोर कन्वीनियंस, ये सब कुछ एंश्योर किया है। और यही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सिटीजन डिविडेंड है। साथियों, बीते दशक में भारत में के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार हुआ है। रिमोट एरियाज में टावर्स लगाए गए, ऑप्टिकल फाइबर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ और डेटा भी सस्ता हुआ। इससे इकोनॉमी के नए सेक्टर्स का भी निर्माण हुआ है। इससे टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेक्टर में नए कंज्यूमर भी बने और नए क्रिएटर्स की भी एक नई जनरेशन तैयार हुई है। आप गेमिंग का ही सेक्टर देखिए, एक अनुमान है कि आज भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी तरह से गेमिंग इकोसिस्टम से जुड़े हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में भारत के युवाओं की है। Tier 2 और Tier 3 शहरों का युवा भी इससे जुड़ा है। अब वो गेम से जुड़ने के साथ ही ई स्पोर्ट्स में कंपीट कर रहा है, गेमिंग कंटेंट बना रहा है और नए गेमिंग बिजनेसेस खड़े कर रहा है। यानी भारत में मोबाइल फोन आज गेमिंग कंसोल भी है और क्रिएशन का स्टूडियो भी बन गया है। साथियों, भारत में हुई टेलीकॉम क्रांति ने यही बदलाव कंटेंट की दुनिया में भी ला दिया है। बेहतर फास्ट कनेक्टिविटी और सस्ते डेटा ने अनेक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया और रीजनल ओटीटी को गांव कस्बों तक पहुंचा दिया है। इससे भाषा से जुड़ी जो समस्याएं आती थी, वो बंदिशें थी, वो भी दूर हो गई है। यानी केवल कंटेंट क्रिएशन से जुड़ी इंडस्ट्री ही भारत में आज हजारों करोड़ रुपए की हो गई है, जिससे लाखों लाख लोगों को कमाई हो रही है। यानी मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन की को भी डेमोक्रेटाइजेशन का कर दिया है। साथियों, आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं जानता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको

फोन पर आए उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है, जब मैसेज आए तो उसे पता हो कि वह असली है या फेक, जब पेमेंट हो तो उसे विश्वास हो कि उसका पैसा सुरक्षित है, जब वह किसी फॉर्म में अपना डेटा दे तो उसे विश्वास हो कि उसका डेटा सुरक्षित है। साथियों, टेक्नोलॉजी स्केल तभी प्राप्त करती है जब वो ट्रस्ट हासिल करती है, और आप सभी जानते हैं कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम भी सीमाएं नहीं मानते, वो पहले ही बाउंड्री को बाहर चले गए। एक देश में बैठा व्यक्ति किसी दूसरे देश की मदद से किसी तीसरे देश में क्राइम कर सकता है। डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके। भारत ने इस दिशा में अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, और भारत अपने अनुभवों को विश्व के साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार है। साथियों, इस दशक में अब सिर्फ 4 साल बचे हैं इस डेकेड में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इस एडिशन में अब आप जो चर्चा करेंगे वो अगले दशक के रोडमैप को सशक्त करेगा, और ये रोडमैप भारत के साथ ही पूरे विश्व के मोबाइल मार्केट को दिशा देगा। बीते वर्षों में भारत ने कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की यात्रा तय की है, अब भारत उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है जहां प्रोडक्ट डिजाइन भी भारत में होगा, उसकी टेक्नोलॉजी और आईपी भी भारत की होगी। इसके लिए हर जरूरी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हर जरूरी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से आगे बढ़ रही है। दशकों पुराने कानूनों को हम आधुनिक बना रहे हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के जरिए हमने मॉडर्न रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है। एजीआर और बैंक गारंटी जैसे स्ट्रक्चरल वंडर्स को रेशनलाइज, वंडर्स को वंडर्स में बदलने का काम भी हमारी तरफ से हो रहा है। और गतिशक्ति संचार पोर्टल ने राइट ऑफ वे अप्रूवल्स को डिजिटल माध्यम से और तेज बनाया है। साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी रफ्तार पकड़ रहा है। अभी तक 5 लोकेशंस पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अगले फेज में हमारा फोकस पूरी सप्लाई चेन पर है, यानी भारत टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र में बड़े कदम उठा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन विकास की यात्रा नित नए पड़ावों को पार करने की है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है।

0: इसलिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। यहां जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले हुई है उनका अपना महत्व है, लेकिन आईएनसी को उन पार्टनरशिप के लिए याद किया जाए जो यहां बनी है, उन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए याद किया जाए जो यहां शुरू हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए याद किया जाए जो यहां से दुनिया तक पहुंचे हैं, और उन इनोवेशंस के लिए याद किया जाए जिन्होंने भारत से निकलकर मानवता की सेवा की है। हमें आईएमसी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसके लिए ही जी जान से प्रयास करते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वालों का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से। तुम इस वेले सुन रहे हो प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी। फरमाइशी सिलसिला जारी है जी। ये फरमाइश साढ़े को पहुंची है जी मखू तो बीला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी, मनीष बजाज होनी सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड बाणीवाला फाजिलका तो क्रियांश बगड़िया, योगेश, ओम प्रकाश, रजत, बेबी गरिमा बगड़िया ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। पंचकूला सैक्टर 9 तो आशुचुग, अश्वनी शुग, गोविंद, टोनी, लव, राधे, भाविक, ढींगरा, पंचकूला सैक्टर 11 तो अतुल शर्मा। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह, पलवी शाह, प्रखर, नीति, मंगला बैन, कुशल, सुरभि शाह, आश्विन शाह ते राजेंद्र जी शाह सानू फरमाइश भेज रहे जी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी वलिया तो ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। रावल करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, सतनाम सिंह गिल ये सानू फरमाइश भेज रहे जी फरीदकोट तो। मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं तो फरमाइश भेज रहे इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर, अमनदीप सिंह, सिमरजीत कौर हठूर, दादरी गेट भिवानी तो कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा, साउथ एवन्यू अबोहर तो जसपाल भारती, वीना, सुरेंद्र, मनदीप, डिंपल, युवराज, हैप्पी, हरप्रीत ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। टैगोर गार्डन नवी दिल्ली तो रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा ते स्वीटी छाबड़ा, चंडीगढ़ तो सतेश अनेजा, बिमला, शेफ आली, शेफी ते मास्टर डेविस सानू फरमाइश भेज रहे ने। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो फरमाइश भेज रहे ने जी। फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांडा ते जी एस रामगढ़िया। आहो सुनते ना सारे की मिली जुली फरमाइश ते दीदार संधु ते कुलदीप कौर की आवाज़ विच एक गीत।

कौर, कमलप्रीत, मीत राणी, गुरतेज कैंथ, विशाखा नंबरदार, पिंड बुरज तो सानू फरमाइश भेज रहे ने जी। पिंड जाखोत राजस्थान तो शंभू दयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत, सुंदर लाल, योगेश, दीपक ते कुमारी पूजा खटक। आओ हुण सुनदे ने सारे की मिली जुली फरमाइश ते मनमोहन वारिस की आवाज़ विच प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: ਇਸੇ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਵਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत के उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। चार दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25

0: करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है, इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी न केवल सिर्फ अंतिम गांव तक बल्कि हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में जीएसटी विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज फिजी में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 के वार्ताध्यक्ष क्रिस बोवन के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि बैठक में उन्होंने संतुलित और सार्थक परिणामों के लिए भारत की प्रतिबद्धता और COP31 के वार्ताध्यक्ष के साथ मिलकर काम करने की पुष्टि की। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 26/11 और पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत कम अभिनेताओं में वो गहराई, अलग पहचान और दमदार मौजूदगी थी जो श्री नाना पाटेकर में थी।
0: वो एक बेहतरीन कलाकार थे जिन्होंने अलग अलग किरदारों के माध्यम से दर्शकों का दिल जीता। नाना पाटेकर जी का जीवन तिरंगे की आन बान और शान के लिए समर्पित रहा। वो बंधनों में नहीं रहे, परिंदे की तरह फिल्मों के आसमान में उड़े।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अस आकाशवाणी ती जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 12:05 हो रहे ने। हम पेशी परिवारिक प्रोग्राम वास्ते वेड़े।

0: अपने प्रॉपर आई ड्रॉप्स पान और हनेरे विच ते बिल्कुल भी ना चलान।
1: भई गगन कई बारी अजिहा भी हुंदा है कि असी ना सानू चश्मा पहला तो ही लग्या हुंदा अखां नू मतलब देखण वाला जिहड़ा चश्मा हुंदा ना ओह लग्या हुंदा सानू पहला तो ही ते उहदा ना नंबर बदल जांदा ते सानू कई वारी थोड़ा उहदे जरिए घट दिखण लग जांदा ते असी अनगौले जे हो जांदे आ ते असी डॉक्टर दे कोल जांदे ही नहीं आई स्पैशलिस्ट दे कोल ते उही चश्मा पा पा के अपना नंबर जिहड़ा ना होर वधा लैंदे आ। अजिहा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि इह डे सारिआं नू समर्पित है क्योंकि असी सारे ने अपनी अखां नू प्यार भी करना है ते अपनी अखां दी देखभाल भी करनी है।
0: ते बिल्कुल जी अज खास होर भी दिन है जी एयरफोर्स डे। देखो असी किन्नी सोहनी खुली हवा विच साह लैंदे आ जिथे मर्जी जांदे आ इंजॉय करदे आ पर इहदे पिछे बहुत बहुत साढ़े वीर भरावां दा बहुत वड्डा हाथ है।
1: बिल्कुल जी ये असी ट्रिब्यूट दिंदे आ सारे ही एयरफोर्स दे जवानां नू क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 तों असी इह दिहाड़ा मनाउणा शुरू कीता सी
0: जी। बिल्कुल और यह दिहाड़ा बहुत ही खास है क्योंकि जेड़े साडे वीर जवान साडे भरा साडे लिए उन्हां बॉर्डरस ते और हवा दे विच अपनी जान दी बाजी लगा के साडी रक्षा कर रहे ने साडा फर्ज बनता है कि उन्हां दा दिन एक दिन नहीं रोज ही मनाइए पर अज खास समर्पित है उन्हां सब नूं और सलाम करदे आ उन्हां दी जेड़ी ड्यूटी हर वेले साडे लिए दिंदे रहिंदे हन।
1: बिल्कुल जी उन्हां दे जज्बे उन्हां दे समर्पण ते उन्हां दे सैक्रीफाइसिस नूं असीं सारे जणे सलाम करदे आ ते इहदे नाल नाल गगन जेड़े साडे यूथ यानी कि नौजवान वर्ग है ना उन्हां नूं वी असीं इंस्पायर करना है कि वह फौजां दे विच भर्ती होन एयरफोर्स नूं चुनन अपने ऐसा करियर क्योंकि इहदे विच बहुत सारिया अपॉर्चुनिटियां एक तो देश की सेवा भी हो जाती है तो उहदे नाल नाल एक वधिया भविख का निर्माण भी हो जाता है।
0: जी बिल्कुल जी साडे एयरफोर्स नूं बहुत वधिया डॉक्टर्स की लोड़ है इंजीनियर्स की लोड़ है तो क्यों ना साडे बच्चे इस फील्ड विच जान और देश की सेवा भी करन और अपना जिहड़ा है पक्ष रखन साडे देश नूं उपर लैके जान।
1: बिल्कुल जी जदों तुसीं पक्ष की गल करदे हो तो पक्ष सारिआं ने भी एक होर रख्या होया है।
0: बिल्कुल वो सब समझ गए
1: जी साडा इशारा है जी गीत वल ते आओ सुनदे हैं खूबसूरत जिहा गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओंबड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: जिस तरह तुम्हें पता ही है कि झोने की जी खरीद है वो

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: जिस तरह तुम्हें पता ही है कि झोने की जी खरीद है वो 1 अक्तूबर

0: हां सच, करतारा ते दुलारी दोवें एक जिंद एक जान सी, तीजा कोई भी नहीं सी, ना पुत ते ना ती, दोवें बस एक दूजे ले ही बने सी, मां बाप भी नहीं सी, सिर्फ इको भरा सी, वो अपना तंगा वाउंदा सी, उस नाल करतारे दा कोई बहुता नेड़े दा वास्ता नहीं सी, करतारा बिल्कुल बेबस सी, उस तो आस ही नहीं सी कि हुण तंगा वाएगा, गुजारा बहुत मुश्किल सी, कुछ कु वरे तां दुलारी ने अपना तांगा किराए उत्ते दे दिता सी, पर ये काफी नहीं सी, किराएदार हेरा फेरी ते बेईमानी करदा सी, आखर उसने सोचिया कि हुण ओह आप ही तांगा वाएगी, रोब तां उहदा उंज बहुत सी, तीवी तां उह सी ही नहीं, सारे एहो कहंदे सी ओह तां संगमा मर्द है, दुलारी ने कमीज ते सलवार तां उंज ही रखी, पर चुन्नी दी थां सिर उत्ते पग जी बन ली ते तांगे उत्ते बह गई। मर्दां दे समाज विच जेकर औरत पग बन्ने ताही तां पूरा पैंदा है, नहीं तां भला कोई हज है। दुलारी ने अपनी चुन्नी दी पग बन ली सी ते गुत उंज ही पिछे लमक रही सी। दुलारी अपने तांगे उत्ते वांगा फड़ के तणी बैठी, अड्डे उत्ते आई ते उच्ची हाक मारन लगी।
1: वो इधर हो, ओ इधर आ जाओ, करतारा टांगे वाला आ गया भाई, करतारा टांगे वाला।
0: दुलारी हुण दुलारी नहीं, करतारा टांगे वाला सी।

0: करतारा तांगे वाला। तुसी सुन रहे सी एक कहानी नाटकी अंदाज विच, लेखक संतोख सिंह तीर, भाग लैण वाले कलाकार सन श्री मनजीत सिंह ते श्रीमती मनजीत कौर, वाचक रोहित कुमार शर्मा, पेशकश डॉक्टर रश्मि खुराना। एक कहानी तुसी कथालोक प्रोग्राम दे अंतर्गत आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे सी।
1: जी, असी हुने कथालोक दे तहत कहानी सुनी नाटकी अंदाज दे विच करतारा टांगे वाला।
2: और वाकई मैं लगता सब नूं बहुत वधिया लगा होएगा सुन के, एक रियालिटी जिंदगी दी, एक असलियत बयान कीती गई है
1: जी।
2: ते हुण असी एक प्यारा जिहा गीत सुन लैंदे हां जी।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਵਜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की सुविधा दी है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा समावेशी हो। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए।

0: भारत ने आगामी 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP31 में महत्वाकांक्षी और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लचीलापन, व्यावहारिक दृष्टिकोण और आपसी सम्मान की आवश्यकता पर जोर दिया है। सम्मेलन से पहले फिजी में आयोजित एक बैठक के दौरान राजनीतिक समझौते के संभावित क्षेत्र और परिणाम विषय पर पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर अब केवल बयानबाजी से आगे बढ़कर कार्रवाई और आपसी सहमति की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छिपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस महत्वपूर्ण अवसर ने वायु शक्ति के एक ऐसे दृष्टिकोण की शुरुआत की जिसने आने वाले दशकों के लिए देश की रक्षा प्रणाली को आकार दिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेताओं में शामिल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 883 अंक गिरकर 71,756 पर और निफ्टी 308 अंक कम होकर 22,295 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस वेले 1:05 हो रहे ने। हुण पेशी प्रोग्रामा दा वेरवा।

हुन तो कुछ समय बाद यानी 1:15 बजे पेश करेंगे प्रोग्राम फौजी वीरा ले। ढाई बजे रंगली धरती प्रोग्राम च आज तुसे सुनोगे बलदेव सिंह सीकरी की आवाज च लोक गीत। साड़ी दूजी सभा शुरू होगी शाम 4 बजे। सभा के शुरू च तुसे सुनोगे मुख खबरां। 4:02 ते प्रोग्राम पेश करेंगे तवे वाला रेडियो। शाम 4:30 बजे तुसी सरवण करोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण। ते सरवण करोगे साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार शाम 5:30 बजे।

शाम 6:30 बजे पेश करेंगे किसान वाणी, कृषि विभाग पंजाब वालों प्रायोजित प्रोग्राम। आज दे इस प्रोग्राम च सिलसिले होंगे खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम का हाल ते इस तो इलावा डॉक्टर रूमा देवी सियालू सब्जियां बारे जानकारी देंगे। सत बजे तुसी सुनोगे पंजाबी गीत। सत बज के 10 मिनट ते जन सेवा से देश सेवा ए प्रोग्राम तुसी सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। सत बज के 45 मिनट ते समाचार दर्शन प्रोग्राम पेश कीता जावेगा।

0: ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
1: बहुत समस्याएं मिली हैं, जहां पे प्रधानमंत्री आवास के जो हितग्राही हैं, जिनको जो राशि मिलना चाहिए थी वो नहीं दी गई है। इस प्रकार की भी शिकायतें मिली हैं कि इंक्रोचमेंट्स के चलते युवाओं को खेल के मैदान की जगह नहीं मिल पा रही। यहां पे बिजली के बिलों की भी अधिकता की शिकायत मिली है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है कि एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री बिजली का दावा करती है, दूसरी तरफ इतनी सारी बुजुर्ग महिलाएं बिजली के जो अधिक बिल उनके पास आए हैं उसकी शिकायत लेके हमारे पास आई है। ये भी शिकायत मिली है कि बिजली के जो वायर्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, वो निर्धारित दूरी जमीन से ना होने के कारण लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन बिजली विभाग के अफसरों का रवैया बहुत ही असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस कर रहे हैं।
0: उगे अदाकार नाना पाटेकर का अज सवेरे गोवा स्थित उन्होंने रिहायश के दिल का दौरा पैण कारण 75 साल की उम्र में देहांत हो गया। हिंदी ते मराठी सिनेमा च अपनी अदाकारी लिए जाने जाते नाना पाटेकर का करियर कई दहाकों तक रहा। उन्होंने परिंदा, क्रांतिवीर, अब तक 56 वेलकम वर्गिया फिल्मों राही बहुत प्रसिद्धि खटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदाकार नाना पाटेकर के देहांत ते दुख का प्रगटावा किया। उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने हर किरदार विच कमाल की बहपक्ता रचनात्मकता का विखारा किया, अजिहे पात्र पेश किए जो पीढ़ियां तक याद रखे जाएंगे। इधर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने भी अज उगे अदाकार नाना पाटेकर के देहांत से डूंघे दुख का इजहार किया। श्री संधवा ने कहा कि उन्होंने काम कलाकारों की आने वाली पीढ़ियां प्रेरित करता रहेगा। नाना पाटेकर का अंतम संस्कार अज शाम 4 बजे पुणे के नेड़े डोंजे किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उन्होंने अंतम संस्कार ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਲਕੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੀ ਨੌਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 42 ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1:15 ਤੇ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ।

फौजी वीरों जय हिंद। आज दे प्रोग्राम लेके हाजिर है सोनिया सैनी। सो प्रोग्राम दा आगाज करते हैं लता मंगेशकर दे गाए इस गीते नाल, फिल्म प्रेम पर बच्चों।

0: फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ, नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम फौजी वीरां लई। प्रोग्राम च हुण सुनवान जा रहे हां फिल्म हंसते जख्म दा एक गीत लता मंगेशकर दी आवाज़ च।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू अजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उसदे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।

0: उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग यादगार नूं आजादी की लड़ाई दौरान पार्टियां वालों दित्तियां गईयां कुर्बानियां दे प्रतीक वजो हमेशा याद रखा जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
2: देश अज 94वां भारतीय हवाई फौज दिवस मना रहा है। हवाई फौज के मुखी चीफ मार्शल ए पी सिंह ने अज हवाई फौज दीआं वधदीआं समर्थावां नूं उजागर करदे कहा कि इस दी असल ताकत ना सिर्फ अत्याधुनिक उपकरणां अते तकनालोजी विच सगों इस दे योद्धिआं विच वी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस विखे होए भारतीय हवाई फौज दिवस समारोह नूं संबोधन करदिआं श्री सिंह ने राष्ट्रीय हितां दी रक्षा विच हवाई शक्ति दी भूमिका ते जोर दिता। इस मौके ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अते गृहमंत्री अमित शाह ने सारे हवाई योद्धियां, साबका सैनिकां अते उन्हां दे परिवारां नूं शुभकामनावां दित्तियां। भारत ने दहशतगर्दी के मुद्दे से पाकिस्तान के दोहरे मापदंडों का इल्जाम लाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान जैश मुहम्मद के मुखी मसूद अजहर से इनाम का ऐलान करके दहशतगर्द समूहों लिए अपनी हमायत को लुकाने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के पहले सकत्र रघुपुरी ने यह गल कही। आखिर खास खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली से भारत यशोभूमि विच इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन आज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे हो रही GST कौंसिल की 17वीं मीटिंग की प्रधानगी कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत के गाना आलमी दखण दियां स्वतंत्र आवाजा के भाईवाला वजो इकट्ठे काम करना चाहिए। देश अज 94वां हवाई फौज दिवस मना रहा है। इस ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 होगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 25 करोड़ तलबा को मुख्तलिफ डिजिटल और ऑनलाइन तालीमी प्रोग्रामों के जरिए बाहम मुंसलिक करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 5.5 लाख से ज्यादा बुनियादी स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंच गई है। GST कौंसिल तनाज़ात को हल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट आमद को बेहतर बनाने की खातिर पॉलिसी असलाहत पर तबादले ख्याल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी सरकार से कहा है कि वो दवासाज कंपनियों के नामुनासिब मार्केटिंग तौर तरीकों की रोकथाम के लिए एक कमेटी बनाए। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का इंतकाल हो गया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के मामले पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के लिए अपनी मदद पर पर्दा नहीं डाल सकता। और आज फिजाई फौज के योम तासीस पर फिजाइया के जांबाजों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह किया। ये 4 रोज़ा तकरीब कल शुरू हुई थी जिसमें टेली मुआसलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तिरा के सिलसिले में भारत की नुमाया पेशरफ्त की अक्कासी की जा रही है। IMC 2026 का मौजू है सरहदों के कतई नज़र, तौसी डिजिटल इख्तिरा, आइंदा सिलसिले की कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की में भारत की बढ़ती हुई सलाहियत का इजहार। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस प्लेटफॉर्म में भारत में टेलीकॉम शोबे और डिजिटल कनेक्टिविटी ने तब्दीली का मुशाहिदा किया है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म ने पर टेलीकॉम शोबे में भारत की तरक्की में एक क्लीदी रोल अदा किया है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि गुज़श्ता बरसों में ये प्लेटफॉर्म भारत की तरक्की और उसकी उमंगों के इजहार का एक प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। जनाब मोदी ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी मुल्क के हर जिले तक पहुंच गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अब मुल्क भर में 5G कनेक्टिविटी दस्तियाब कराने के लिए 5,50,000 से ज्यादा बेस स्टेशन मौजूद हैं।
4: 2022 में इसी मंथ से हमने देश में 5G की शुरुआत की थी। फिर 2023 में मैंने बताया था कि भारत कैसे 5G रोल आउट से 5G रीच आउट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आज हम सभी देख रहे हैं देश के हर जिले तक 5G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। आज 5.5 लाख से अधिक बेस स्टेशन भारत में हैं, जहां से 5G नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल इंटरनेट स्पीड 2022 की तुलना में

0: 10 गुना बढ़ी है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने तालीम, सेहत की देखभाल और हुकूमती खिदमात को कुव्वत बख्शी है। उन्होंने कहा कि आज दूर दराज गांवों और गरीब कुनबों के हर बच्चे को मेयारी इल्म तक रसाई हासिल है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि फायदे की बराह रास्त मुंतकली के तहत तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो पाई। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हुकूमत मुख्तलिफ डिजिटल और ऑनलाइन तालीमी प्लेटफार्म के जरिए तकरीबन 25 करोड़ तलबा को कनेक्ट करने की खातिर काम कर रही है। जनाब मोदी ने दीक्षा प्लेटफार्म के जरिए भारत में डिजिटल तालीम की बढ़ती अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान जुलाई 2022 तक दीक्षा ने 500 करोड़ से ज्यादा सीखने के सेशन और तकरीबन 6000 करोड़ सीखने के मिनट दर्ज किए।
0: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: इस मौके पर मुआज़लात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि टेक्नोलॉजी न सिर्फ हर गांव बल्कि हर शहरी तक पहुंचनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जब कांग्रेस ने इख्तदार के गुरूर में मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की और जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की तो लोक नायक करोड़ों हमवतनों की आवाज बनकर बेखौफ डटे रहे। जनाब अमित शाह ने इस बात को भी उजागर किया कि कैद में रखने और अजियत पहुंचाने से भी वो अपने पुख्ता अज़्म से पीछे नहीं हटे और मुकम्मल इनकलाब के उनके ऐलान के सामने इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा। जनाब अमित शाह ने कहा कि जयप्रकाश नारायण की जिंदगी का फलसफा हर मुहिब वतन शहरी के लिए तरगीब का एक दायमी वसीला है। जीएसटी काउंसिल की 97वीं मीटिंग में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की सदारत कर रही हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के वजीर आला डी के शिव कुमार, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी और रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के वजराए खजाना भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी तनाजात के हल और टैक्स क्रेडिट को बेहतर बनाने के सिलसिले में पॉलिसी इसलाहात पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को हिदायत दी है कि वो दवासाज कंपनियों के मार्केटिंग तौर तरीकों की जांच के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाए। इनमें डॉक्टरों को दिए जाने वाले तहाइफ और दीगर फायदे नीज आईनी इंजबाती अमल शामिल है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल एक बेंच ने एक दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये हिदायत जारी की। इस दरख्वास्त में अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियों और डॉक्टरों के दरमियान नामुनासिब राबतों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की गई है। मुजव्वजा कमेटी मुतालिका फरीकों के नजरियात पर गौर करेगी और इस बात की सिफारिश करेगी कि आया किसी आईनी फ्रेमवर्क की जरूरत है या नहीं और अगर ऐसा है तो इसकी तश्कील दिया जाए। सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनकी रिहायशगाह पर दिल का शदीद दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 75 साल के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी शानदार अदाकारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई दहाइयों तक सिनेमा में काम किया। नाना पाटेकर को परिंदा, क्रांतिवीर, अब तक 56 और वेलकम जैसी फिल्मों के लिए काफ़ी मकबूलियत हासिल हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदी और मराठी सिनेमा के सरकर्दा अदाकार नाना पाटेकर के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि नाना पाटेकर ने फिल्मों में ऐसे कई किरदार अदा किए जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि नाना पाटेकर ने अपने हर किरदार में काबिल कदर तख्लीक और गुनागुन खासियत का मुजाहरा किया जिसे आने वाली कई नस्लों तक याद रखा जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के मामले पर दोहरा मेयार अपनाने का इल्जाम लगाया है और कहा कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बारे में जानकारी के लिए इनाम का

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक 20 स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरे रवैये अपनाने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की बात छुपा नहीं सकता। और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और प्रौद्योगिकी नवाचार में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को दिखाया जा रहा है। 4 दिवसीय इस सम्मेलन की शुरुआत कल हुई थी। इस वर्ष का विषय है सीमाओं से आगे विस्तार। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस मंच ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटल कनेक्टिविटी के विकास को देखा है।
2: बीते वर्षों में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के माध्यम से बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे सामने विकसित भारत का एक विराट संकल्प है। इसके लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर व्यापक करते रहना है। हमें IMC को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट और आइडिया का एक जंक्शन बन सके।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक लोगों को पहुंचाने में सुविधा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने दीक्षा प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
2: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान July 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और

0: करीब 6000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार ऑपरेटरों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
2: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
1: इस आयोजन में दुनिया भर के तकनीकी क्षेत्र के दिग्गजों, नेत्र निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नव प्रवर्तकों को एक मंच पर लाया गया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में GST विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप, शिक्षण संस्थानों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के व्यापक वर्ग तक AI की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अब उन देशों में शामिल है जिन्होंने AI को अपनाकर इसके वास्तविक लाभ हासिल किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य फायदों सहित फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने ये निर्देश उस याचिका की सुनवाई के दौरान दिए जिसमें दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच अनैतिक व्यवहारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई थी। प्रस्तावित समिति संबंधित पक्षों की राय और सुझाव पर विचार करेगी, साथ ही ये देखेगी कि क्या दवा कंपनियों की विपणन पद्धतियों को नियंत्रित करने के लिए किसी वैधानिक ढांचे की जरूरत है या नहीं, और यदि है तो उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए। केंद्र सरकार से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा गया है। अगली सुनवाई अगले साल 29 जनवरी को होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा करके आतंकवादी गुटों को अपने समर्थन की बात छुपाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा कि दुनिया 9/11, 2008 के मुंबई और 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमलों को नहीं भूली है। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रथम सचिव रघुपुरी ने कहा कि केवल घोषणाओं से आतंकवाद का खात्मा नहीं किया जा सकता। श्री पुरी ने आतंकवादियों, उनके वित्त पोषकों और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने के पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। श्री पुरी ने मसूद अजहर के बारे में सूचना देने के लिए 70 लाख रुपए के इनाम की नई घोषणा को भी दिखावा बताया। प्रमुख आतंकवादी हमलों का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करता है। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और घाना लंबे समय से साझेदार हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ के प्रमुख देशों के रूप में स्वास्थ्य, कृषि,

0: फार्मास्यूटिकल्स, खनन, रक्षा, रेलवे और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा, जैव विविधता, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में समझौते किए। भारत ने पिछले कुछ दिन में रियाद के अबहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। इसमें आम नागरिकों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में ऐतिहासिक जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्विकास की जानकारी दे रहे हैं।
1: जलियांवाला बाग का जिक्र होते ही वर्ष 1919 में अमृतसर में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए जुल्म की दर्दनाक यादें ताजा हो जाती हैं। वह 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था जब ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर ने अपने सैनिकों से सैकड़ों बेगुनाहों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाकर उन्हें मार डाला था। ये लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। उस समय इन शहीदों की याद में बने जलियांवाला बाग यादगार को दशकों बाद पुनर्विकसित कर 28 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स में विकास के कई काम हुए। पंजाब की अपनी भवन निर्माण शैली के अनुसार इसकी विरासत बहाली का काम बहुत ध्यान से किया गया। उस वक्त पंजाब में घटित ऐतिहासिक अहमियत की घटनाओं को दिखाने के लिए 4 म्यूजियम गैलरियां बनाई गई और एक साउंड एंड लाइट शो शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से इस यादगार को देखने और नतमस्तक होने आए सैलानियों ने इसके पुनर्विकास के काम की तारीफ की।
2: मोहनलाल जोधपुर से, जो हमने किताबों में पढ़ा था वो मैंने आज यहाँ पे आकर के खुद ने अपनी आंखों से देखा और मुझे महसूस भी हो रहा है। गवर्नमेंट इंडिया ने बहुत अच्छा किया है जिससे कि यहाँ पे सब कुछ युवा पीढ़ी है जो, और आगे की जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो आगे आएंगे, आने वाली पीढ़ी भी देखेगी यहाँ पे कि पहले कैसे हुआ था और क्या हुआ था। गवर्नमेंट इंडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा।
3: मैं बहुत टाइम पहले आई थी उसमें लेके, और अब से बहुत काफी सारे चेंजेस हुए हैं। पहले ये मेंटेन नहीं था, अब काफी अच्छे से मेंटेन किया गया। और यहाँ पे गार्डन बहुत अच्छा है, बहुत सफाई है यहाँ पे। इवनिंग में लाइटनिंग भी होती है, पूरा हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कैसे क्या हुआ पहले और क्या क्या चेंजेस अभी आए हैं। आने वाली पीढ़ी जो आगे आ रही है जनरेशन, उनको इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली पता चलेगा।
4: मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है, मैं वाराणसी से आया हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ के बारे में सुना हुआ था अपने दादा परदादा के मुँह से, बट आज हमने ये कुछ चीजें आके यहाँ पे वो देखे कि जैसे लगा कि हमने मतलब अपने मिट्टी से जुड़े हुए सब चीजें हमको यहाँ पे मिला। और काफी चीजें देख को हमको ये लगा कि उस समय जो हुआ था हमारे यहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने ऐसा कुछ किया कि ये चीजें देख के जाने के बाद हम अपने अगली पीढ़ी को भी बता सकते हैं कि एक बार वो यहाँ पे आए जरूर।
1: जलियांवाला बाग मेमोरियल को आजादी की लड़ाई के दौरान भारतीयों के बलिदान की निशानी के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष के थे। नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे।
5: कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो।
6: विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें दुनिया नाना पाटेकर के नाम से जानती है, उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में हुआ था। नाना पाटेकर उन कलाकारों में से थे जो पर्दे पर आते ही किरदार में जान डाल देते थे।
7: आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत।
6: 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित नाना पाटेकर ने परिंदा, क्रांतिवीर, अग्नि साक्षी, नट सम्राट, अब तक 56 और यशवंत जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1978 में गमन से बॉलीवुड में कदम रखने वाले नाना पाटेकर ने अलग अलग तरह के किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया। शक्ति द पावर, अपहरण, टैक्सी नंबर 9211 और राजनीति जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। फिल्म वेलकम में गैंगस्टर उदय शेट्टी के किरदार से उन्हें खास तौर पर लोकप्रियता मिली। नाना पाटेकर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सिनेमा से अपना रिश्ता बनाए रखा। हाउसफुल 5,

0: ओ रोमियो और हाल ही में रिलीज हुए सूबेदार में भी नाना नजर आए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज शाम 4 बजे पुणे के पास डोंजे में अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। देश आज भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ मना रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन किया गया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी वायु योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार

0: योद्धाओं, अनुभवी सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने आज वायुसेना की बढ़ती क्षमताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वायुसेना की असली ताकत केवल उन्नत उपकरणों और तकनीक में नहीं बल्कि इसके योद्धाओं में निहित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से 25 करोड़ छात्रों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा, 5,50,000 से अधिक बेस स्टेशनों के साथ 5G कनेक्टिविटी हर जिले तक पहुंची। वस्तु और सेवा कर परिषद में विवादों को सुलझाने और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों की विपणन पद्धतियों के वैधानिक नियमन की आवश्यकता की जांच के लिए केंद्र सरकार को समिति गठित करने का निर्देश दिया। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का निधन। भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश वायुसेना दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को नमन कर रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 2:30 ने हुण पेश है रंगली धरती प्रोग्राम। अज दे इस प्रोग्राम च तुसी सुणोगे बलदेव सिंह सीकरी दी आवाज़ च लोक गीत।

0: बलदेव सिंह सीकरी दे गाए इस लोक गीत दे नाल ही रंगली धरती प्रोग्राम हुण खत्म होया। असीं आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले दोपहर दे 3 बजे ने। हुण साडी अज दी सभा दे प्रोग्राम इत्थे ही खत्म हुंदे ने। अपनी दूजी सभा दे प्रोग्राम लै के शाम 4 बजे थोड़ी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, नमस्कार।
1: डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण दुपहर दे ठीक 3 बज चुके ने। पेश है हुण तक दीआं मुख खबरां।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली दे यशोभूमि विच इंडिया मोबाइल कांग्रेस दे 10वें एडिशन दा उद्घाटन कीता। खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन आज नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे हो रही जीएसटी दे काउंसिल दी 17वीं मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ते घाना नूं आलमी दखण दीआं स्वतंत्र आवाजां अते भाईवालां वजों इकट्ठे काम करना चाहीदा है। देश अज 54वें हवाई फौज दिवस मना रहा है। पंजाब दे राजपाल गुलाब चंद कटारिया ने बीते कल चीन मिया मिशन दी स्थापना दे 75वां साल पूरे होण मौके पटियाला विखे चीन मिया अमृत महा उत्सव विच मुख मेहमान वजों शिरकत कीती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मेरा घर मेरा नाम स्कीम तहत परिवारां नूं जायदाद दे मालकाना हक संबंधी सर्टिफिकेट सौंपे। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन दे मेंबर प्रियंक कानूगो वलों बरनाला विखे जिले दे बरनाला जिले दे पिंड धौला विखे जन सुनवाई दौरान जनता दीआं शिकायतां सुनिया गईआं। दिग्गज अदाकार नाना पाटेकर दा दिल दा दौरा पैण कारण 75 साल दी उम्र विच देहांत हो गया। अंतिम संस्कार अज शाम 4 बजे पुणे दे नेड़े पंजो विखे कीता जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी दे मुद्दे ते पाकिस्तान दे दोहरे मापदंडा दा इल्जाम लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नूं दवाइयां बनाउण वालियां कंपनियां वल्लों डाक्टरां नूं दित्ते जाण वाले तोहफे अते होर लाभां समेत मार्केटिंग ढंग तरीके ते कानूनी नेमबद्धी दी जरूरत दी जांच करन लई इक 3 मैंबरी कमेटी दा गठन करन दा निर्देश दित्ता है। इस हुण तक दीआं मुख खबरां।

0: दोनों दीप जवानी ए भारत माता गहना है, ए भारत माता गहना है, ए भारत माता गहना है।
1: जी असीं इस गीत दे विच इह सुणिया वी ए इक बां नूं अपने बच्चे दा किन्ना फिकर हुंदा ते किस तरह उहदे भलाई लई वास्ते पुछदी है कि उह चंगे रात चले, चंगा काम करे, चंगा निकले। ते जरूरी भी आ कि बच्चों का चंगा होना जरूरी है। जे कोई उन्हां नूं लगदा है कि बच्चा कुछ गलत काम कर रहा जां कुछ है, तो उन्हूं बिठा के बहुत ही प्यार नाल समझाना चाहिदा है। उहदा कारण यह कि मां प्यो की जिहड़ी चिंता है दूर कर देनी चाहिए कि नहीं, सब कुछ ठीक है और ठीक ही रहना चाहिए। तो खरूब तरक्की करनी चाहिए बच्चों नूं। तो यह गाना बहुत पुराना लिखा हुआ लेकिन ढुकदा है कि बच्चों का ख्याल बहुत ही जरूरी है। पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो खाता है जी हरजिंदर छिंदा, जसबीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता का। तो एक खत है जी पिंड खाने की ढाब तो शमशेर सिंह कौलतर, जसविंदर कौर।

आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम तवे वाला रेडियो। इस प्रोग्राम तहत सुनवांदे हैं पुराने पंजाबी फिल्मी गीत। सो हुण सुनवान जा रहे हैं शमशाद बेगम दी आवाज विच एक गीत फिल्म दो लच्छियां चों।

0: आओ हुण सवन करते हैं साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।
1: गुरबाणी विचार इस प्रोग्राम के प्रायोजक ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री

आपह सूखम आपह अस्थूला, लकी न जाई नानक लीला। कथन मुताबक करते के गुण वर्णन नहीं किते जा सकते, उसके बारे त जानिया ही नहीं जा सकता। उस बारे कुछ कहना किस तरह संभव है? इस संसार विच सर्वव्यापी प्रभु सागर दी न्याई है। निक्की जी मछली वर्गा जीव किस तरह प्रभु दा अंत पा सकता है? हे प्रभु, मैं असमर्थ हाँ। प्रभु, तू ते सारे पासे व्यापक है, मैं तेरे तो परां जीवित नहीं रह सकता। जिमें मछली नूं पता नहीं हुंदा मछेरा कौन है अते जाल कित्थे है, हे प्रभु, मैं भी अनजाण हर दुख वेले तैनू ही चेते करदी हाँ। तू ते सबनी थाई भरपूर है, मैं तैनू बेसमझी करके दूर समझ लिया सी, हुण मैं तेरी ही रजा च राजी हाँ। तू मेरे कीते कर्मां नूं वेख रहा है, मैं मुकर नहीं सकता कि मैं तेरे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकिया। हे प्रभु, भावें मैं तेरिया दित्तियां दातां विच ही राजी हाँ, मैं होर केड़े दर ते जावां, ऐसा होर कोई दर नहीं है। मेरा शरीर अते जिंद आप ही हो, मेरी यही अरदास है, तू आप ही नेड़े है अते दूर भी अते हर थां विचरदा भी है। आप ही अपनी सत्ता अनुसार सब कुछ वेखण वाला, सब कुछ सुनन वाला सिरजणहार है। जो आप जी नूं पौंदा है उही आप जी दा हुक्म मेरे सिर मत्थे है, उस विच ही मैं राजी हाँ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी सिरी राग विच उचारे हुए शब्द विच फरमाउंदे ने, तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझते निकसी फूट मरा। इस शब्द का गायन किया भाई जसबीर सिंह ते उन्हां दे रागी।

तू दरियाओ दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। इस शब्द गायन की तसी पाई जसबीर सिंह अते उन्होंने रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु रामदास जी बिहागड़ा राग विच उचारित छंत दे तीजे भाग विच अकाल पुरख की समर्था अते विशालता का खूबसूरत चित्रण करते हुए फरमाउंदे ने कि हे सर्व कला समर्थ, सब तो वड्डे प्रभु आप महान हो। मैं थोड़ी मत नाल आप जी दे बारे की कथन कर सकता हाँ। तुसी तां बिना किसे वितकरे दे ना शुकरे जीवां दी वी प्रतिपालना करदे हो। आप समदृष्ट हो अते कृपा दे घर विच ही रहिंदे हो। हे प्रभु, तुसी मेरी समझ तों परे हो। बुद्धि मंडल दियां परतां आप जी दी होई कृपा बारे कुछ भी नहीं समझ सकियां। मैं नीवी मत वाला आप जी बारे की जान सकता हाँ। मैं मूरख ने तां आप जी दा अमोलक नाम छड़ के पशु मत रखदे हुए कौडियां ही इकट्ठियां कीतियां ने। मैं अन्याणी मत वाला बारिक हाँ। ना थिर रहन वाली माया जो त्यागनी चाहिदी सी पाप कर करके जोड़दा रहा। हे प्रभु, हुण मैं आप जी दी शरण विच आया हाँ। कृपा करो मेरी शरण आए दी लाज रख लो जी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पाल है अकिरत कना पूरन दृष्ट तेरी राम। इस शब्द का गायन किया भाई हरि सिंह ते उन्होंने

0: तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई हरी सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरमीत सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु अर्जन देव जी दा उचारण कीता होया धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 547 ते ब्यागड़ा राग विच अंकत है। ये छंत दा तीजा पद है। इस पद शब्द विच धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उस अकाल पुरख परमेश्वर दी सिफत सलाह इउं वर्णन करदे हन। हे प्रभु जी, तुसी वड्डी ताकत भाव समर्था वाले हो। मेरी अकल बहुत छोटी जही है, तेरे इस वडप्पण नूं समझ नहीं सकदी, क्योंकि हे प्रभु तेरी तां नदर ही इकसार है। भाव तू सभना नूं इकसार देखण वाला है। हे प्रभु, तू तां अकिरत कणां दी भी पालना करदा है। इस प्रथाए धन श्री गुरु अर्जुन देव जी दा श्री राग विच मुबारक अंग 83 उपर बचन सुभाए मान है। हे प्रभु, तू उना नू भी पालदा है जो तेरे कीते उपकारा नू भुला दिंदे हन। इना ना शुक्रिया दी रोजी दा प्रबंध भी प्रभु आप करदा है। हे प्रभु, तू सदा ही जीवा दियां भुला बख्शन वाला है। गुरवाक है अकिरत कणा नू पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। गुरबाणी मुताबक दरअसल अकिरत कण कौन हन? माझ राग दी वार विच आद गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी दा पावन पवित्र बचन है जो 143 अंग उपर सुभाए मान है। सतगुरु फरमाउंदे हन, अपने मन दे पिछे तुरन वाले मनमुख लून हरामी बंदे परमात्मा दे कीते उपकार दी सार नहीं जानदे। ओ बस विखावे वास्ते भाव बद्दे रुद्दे ही उस नूं सलामा करदे हन। इस तरह उस खसम नूं प्यारे नहीं लगदे, भाव पाउंदे नहीं हन। मनमुख लून हराम क्या ना जाणिया, बद्दे करन सलाम खसम ना पाणिया। पर प्रभु ऐसा मेहरवान है, किरपालू है, उस दे गुणां दा वख्यान करदिया होया कलगी धर दशमेश पिता धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पावन बाणी अकाल उस्तत विच उचारण करदे हन। जो प्रभु जड़ ते चेतन वस्तुआं नूं रिजक दिंदा है, जमीन ते आकाश विच विचरण वालियां नूं भी संभालदा है। हे प्राणी, तू क्यों चिंता करदा है ते डोलदा है? तेरी सार संभाल भी प्रभु ही करन वाला है। बचन हन जान को

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़

0: करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया गया है। कर फाइलिंग में देरी, गलती या भुगतान करने में विलंब करने वाले करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
1: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज रेकमेंडेड।
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लगभग 25 करोड़ विद्यार्थियों को विभिन्न डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा मंचों से जोड़ने का प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दीक्षा प्लेटफॉर्म से भारत में डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशंस और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार केंद्र हैं। 4 दिन का सम्मेलन कल शुरू हुआ। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने युवाओं से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपनी कौशल, रचनात्मकता और नवाचार क्षमता का सदुपयोग करने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज एक संस्थान में श्री मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये शिखर सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें एआई के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष 863 अरब डॉलर का निर्यात किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में 31वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन के पूर्वावलोकन में ये बात कही। ये शिखर सम्मेलन 12 और 13 नवम्बर को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा पुनरुद्धार पर गठित सशक्त कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई और नदी पुनरुद्धार के लिए कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से किए जा रहे प्रमुख उपायों पर विचार विमर्श किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सकों को दिए जाने वाले उपहारों और अन्य लाभों सहित औषधि कंपनियों की विपणन प्रणालियों के वैधानिक नियमन की जांच के लिए केंद्र सरकार को 3 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपेली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन थन दस दिए जरात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वीरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।

शाम 6:30 बजे किसान वाणी प्रोग्राम जज सुनोगे मेरी खेती ते गलबात करेंगे KS चाहल PAU वालों नवीं किस्मां ते गलबात करेंगे डॉक्टर AS दत्त। ਸੱਤ ਵੱਜ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ। 7:45 ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। 8:10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੱਕ। रात 10:02 ते शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम सुर साधना च अज सुनोगे सरंगी वादन ते राग मारवा, कलाकार होंगे पंडित राम नारायण। 10:30 सुनोगे प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश जो कि फोन इन ते व्हाट्सएप बेस्ड होएगी। शाम 6:20 ते सुनोगे प्रादेशिक खबरां। रात 8:30 होणगियां पंजाबी च खबरां। 8:45 ते दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9:00 न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड ते 9:45 ते इनसाइड। रात 11:00 दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार, 11:05 ते अंग्रेजी च समाचार। एसी अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

0: पता है। और जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: जिस तरह तुम्हें पता ही है कि झोने की जी खरीद है वो 1 अक्तूबर तो

0: पहल बहुत जानकारी ले सभी इन्वेस्टर वेबसाइट पे विजिट करो या सभी साथी ऐप डाउनलोड करो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। देश अज 94वां हवाई फौज दिवस मना रहा है। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में नशा मुक्त संकल्प यात्रा च लिया हिस्सा, नशा मुक्त समाज बनाने का दिता सद्दा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज चंडीगढ़ विखे हुनर पंजाब और फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल जारी किए। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने पठानकोट मंडियां का दौरा किया, कहा हुण तक किसानों को खरीद के 1421 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए ने। पंजाब सरकार वालों कल सरकारी स्कूलों च करवाई जाएगी मैगा पीटीएम, 25 लाख मापे होंगे शामिल। दिग्गज अदाकार नाना पाटेकर का देहांत, अंतम संस्कार सरकारी सन्माना नाल पुणे नेड़े डोंसे विखे किया जाएगा। देश अज भारतीय हवाई फौज की 94वीं वरेगंढ मना रहा है। हवाई फौज के मुखी एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अज हवाई फौज दाधिया समर्थावान उजागर करते हुए कहा कि इसकी असल ताकत न सिर्फ अत्याधुनिक उपकरण तकनोलॉजी है सगों इसके योध्या भी है। गाजियाबाद के हिडन एयरबेस विखे हुए भारतीय हवाई फौज दिवस समारोह में संबोधन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय हितों की रक्षा में हवाई शक्ति की भूमिका पर जोर दिता। उन्होंने कहा कि हवाई फौज हमेशा सुचेत वचनबद्ध और किसी भी हंगामी स्थिति नाल नजिठण वास्ते तैयार रहती है। हवाई फौज दिवस को मनाने लिए हिडन एयरबेस के एक शानदार परेड नाल हवाई फौज ने अपनी बहादरी का विखाला किया। परेड दौरान हवाई फौज मुखी ने परेड का निरीक्षण किया। इस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सारे हवाई योद्धियों सबका सैनिकों और उन्होंने परिवारों को शुभकामनावां दित्तियां ने। पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अज नशा मुक्त संकल्प यात्रा को झंडी दिखा के रवाना किया। इस यात्रा में हिस्सा लिया। यह यात्रा चंडीगढ़ के सैक्टर 10 के लेजर वैली तो शुरू हुई और तिरंगा पार्क सैक्टर 17 विखे समाप्त हुई। नशा मुक्त संकल्प यात्रा च स्कूलों कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के अध्यापकों के विद्यार्थियों, एनसीसी और एनएसएस वॉलंटियर्स से चंडीगढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके संबोधन करदिया प्रशासक श्री कटारिया ने कहा कि नशिया खिलाफ लड़ाई में इकलिया पुलिस से नहीं छड़िया जा सकता, तो इसलिए लोगों, परिवारों, भाईचारों, सरकारी विभागों, सेहत ते सिक्ख्या संस्थावां, गैर सरकारी संगठनों ते नौजवानों के सांझे उपरालों की लोड़ है। उन्होंने नशा मुक्त समाज बनाउण ते विकसित भारत में योगदान पाउण लई लगातार लोगों की भागीदारी का सद्दा दिता। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ पुलिस वालों एक समर्पित नशा विरोधी हैल्पलाइन की शुरुआत करते हुए नशा विरोधी मुहिम को मजबूत किया गया। इस मौके राज्यसभा मैंबर सतनाम सिंह संधु, नगर निगम चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी समेत चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम चंडीगढ़ के होर अधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज चंडीगढ़ विखे हुनर पंजाब अते फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल जारी किए ने। उन्होंने कहा कि नवे पोर्टल 45 दिनों के अंदर सिंगल विंडो राही सारिया जरूरी प्रवानगियां यकीनी बनाएंगे, निवेशकों को वित्तीय उत्साह की पारदर्शी ढंग नाल ट्रैकिंग करने के योग बनाएंगे, उद्योगों को हुनरमंद नौजवानों नाल सीधी तरह नाल जोड़नगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब ने 2022 तो लैके हुण तक 1,99,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिस नाल 6 लाख तो वध नवीं नौकरियां पैदा हुई ने। पोर्टल जारी करने तो बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि हुनर पंजाब के फास्ट ट्रैक पंजाब की शुरुआत पंजाब के उद्योग के नौजवानों लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनतक सेवा च 25 साल पूरे कर लए ने। यह यात्रा जन सेवा से देश सेवा दे मंत्र राही परिभाषित है ते कणथक वचनबद्धता है जो जारी है। सेवा ते सुशासन लिए इस दृष्टिकोण तो सीध लेंदे हुए सरकार 2047 तक एक विकसित भारत के टीचे नूं प्राप्त करन लई लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास ते समाजिक सशक्तिकरण राही समर्पण जीवन नूं बदल रहा है ते अज साडी विशेष लड़ी च असीं तुहाडे लई इक मिसाल लैके आए हां कि किवें इस दृष्टिकोण नूं इतिहासक जलियांवाला बाग यादगार दे मुड़ विकास राही अमल च लियांदा गया। पेश है इक रिपोर्ट।
2: जलियांवाला बाग दा नां आउंदे आई 1919 विच अमृतसर विच बरतानवी हुकूमत वालों की गई बेरहमी दीआं दर्दनाक यादां सानू 13 अप्रैल दे विसाखी वाले दिन वल लै जांदियां ने, जदों ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर दी अगवाई विच उस दीआं फौजी टुकड़ियां ने सैकड़े बेकसूर लोकां नूं अन्नेवाह गोलियां चला के मार दित्ता सी। इह लोक रॉलेट एक्ट दा शांतिपूर्ण विरोध करन लई इकट्ठे होए सन। उस समय दे शहीदां दी याद विच बनाई गई जलियांवाला बाग यादगार दी दहाकियां बाद मुरम्मत करके इस नूं इक नवीं नुहार दित्ती गई।

0: सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होएगा सुरक्षित।
2: अते 60 साल की उम्र वालों नूं 3000 रुपए महीने की पेंशन होएगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किश्त दे के योजना विच शामिल हो सकते ने 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना विच सरकार देगी बराबर दा योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना दे लाभ लई जन सेवा केंद्र विच जान
2: ते अपना नाम मुफ्त विच दर्ज करान।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता दी मेहनत नूं समर्पित। पेंशन नाल सुरक्षित उन्हां दा मान। कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित विच जारी।
0: जय हिंद किसान वीरो। किसान वाणी दा ए प्रोग्राम लैके असीं हाजिर हां। असी कोशिश करते हाँ कि वन सवन्नी जानकारी थोड़े तक पहुँचाइए ताकि जिहड़े साडे किसान वीर ने जो किसी भी किते विच अगे आना चाहण तो अगे आ के एंटरप्रेनर के तौर पर वो अपने काम नूं सुचारू ढंग नाल चला सकते ने। तो इस तरह सुचारू रूप नाल काम चलाया है किसान लखविंदर।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आज हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है जन सेवा से देश सेवा। आज हम चर्चा कर रहे हैं हर घर बेहतर जीवन के बारे में और जिन अलग अलग पहलुओं की आज हम बात करेंगे उनमें एक साझा कड़ी दिखाई देती है। इनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद ऐसे हैं जो आंकड़ों में तुरंत दिखाई नहीं देते, चाहे वो पानी या ईंधन लाने में बचने वाला समय हो या फिर वो स्वच्छ ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य के लाभ हो या फिर बिजली और बेहतर आवास से पैदा होने वाली आर्थिक गतिविधियां हो। आज की हमारी चर्चा इन सब विषयों पर है और आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड पवन कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट।

0: लिस्ट। नमस्कार और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी स्टूडियोज में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। जब भी कोई पॉलिसी अस्तित्व में आती है उसका मूल्यांकन कितने समय में किया जा सकता है? पहले हम आपसे शुरुआत करते हैं पवन जी।
1: नमस्कार, अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आके। देखिए, कुछ पॉलिसी आप 2 महीने में नाप सकते हैं, कुछ पॉलिसी आप 1 साल में नाप सकते हैं, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। पर जो आपका रिक्वायरमेंट है, जिस पॉलिसी के बारे में आप बात करना चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इंपैक्ट आपको, उसके लिए आपको लंबा वक्त देना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, इन्फ्लेशन नापने के लिए कोई पॉलिसी लेते हैं आप तो 1 महीने में नाप सकते हैं कम हुआ कि नहीं हुआ। FDI पे आपको बात करनी हो तो 1 साल का टाइम चाहिए, देखते हैं क्या हुआ, कितना आया, कहाँ से आया, कौन से सेक्टर में आया। अब जिस स्ट्रक्चरल पॉलिसीज की बात आप कर रहे हैं कि साहब जल जीवन मिशन का कितना फर्क पड़ा, या जो दूसरी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका कितना फर्क पड़ा, उसमें आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का, जो मेरा इकोनॉमिक्स जितनी मुझे समझ में आती है उसके हिसाब से 5 साल का आपको एक होराइजन मान के चलना पड़ेगा। कुड भी 5 साल, कुड भी 10 ईयर्स ऑल्सो, बट 5 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा। तो पॉलिसी नापने के अपने मेजरमेंट के अपने तरीके हैं। वो है नहीं कि साहब कोई पॉलिसी सरकार ने कल को लॉन्च किया और आज उसका मूल्यांकन करें और उसके बाद आप कहें कि साहब काम हुआ या काम नहीं हुआ। वो सही तरीका पॉलिसी का नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम पॉलिसी को देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट यू हैव लॉन्च्ड,
0: ताकि उसका प्रभाव नजर आए और बेहतर समझ में आए।
1: जी
0: डॉक्टर पॉल, आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आप नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं, आपका नजरिया शायद थोड़ा सा अलग होगा इस बारे में।
2: एक्चुअली अलग नहीं है पवन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ये पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका असर कब होगा, ये बात बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये हम रख के चल सकते हैं कि अगर एक पॉलिसी ने एक्शन अचीव करना है, मान लीजिए कि एक बात हो गई कि हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएंगे, फैसला हो गया कि हम कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को अपने लेवल पे लेके जाएंगे, इसको बनाने का टाइम लगेगा, इसको 4-5 साल 3 साल लगते हैं बनाने में। इंक्रीमेंटल रोल आउट होता है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, फिर एक सैचुरेशन लेवल पे कवरेज, फिर क्वालिटी। तो कुछ चीजों में डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द इनिशिएटिव, इट टेक्स डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू सी द इम्पैक्ट। लेकिन अगर गुड बेंच मार्क इज, आई एग्री विद सर दैट 5 years इज अ गुड बेंच मार्क फॉर मेनी ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट will and have changed the ease of living for our families.
0: Okay.
2: तो उस benchmark से आपसे आगे बात बढ़ाते।
0: जी बिल्कुल, और क्योंकि आज का जो विषय है वो हर घर बेहतर जीवन के बारे में है, जो शुरुआत घर से करते हैं। अब जब हम घर को परिभाषित करते हैं या हम आवास की बात करते हैं, तो क्या आवास को केवल एक छत के रूप में देखना चाहिए या फिर परिवार की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के आधार के रूप में भी उसे देखना चाहिए?
1: घर की जब आप बात करते हैं तो उसमें आपको घर में पहुंच के अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप 5 दिन कहीं बाहर हैं, आप घर में, घर से ज्यादा कहीं खुशी नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम जब घर बोलते हैं तो उसमें सब कुछ होना चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, उसमें बिजली होनी चाहिए, उसमें रहने की जगह होनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें घर में रहकर आप, आपके बच्चे हैं, आपके जो परिवार है उसकी देखभाल करिए आप। तो आप, मेरे लिए घर जो है, इवन सरकार की स्कीमों के हिसाब से घर जो है केवल छत दे दिया तो वो घर नहीं है,
0: एक होलिस्टिक
1: पूरा एक होलिस्टिक आकार प्रकार है उसका। वो जब आपके पास है तो आप उसको घर बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: मेरे ख्याल से शायद यही पूछना चाह रही थी आप।
0: जी बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रही थी और ये मैं प्रधानमंत्री आवास योजना को मद्देनजर रखते हुए पूछना चाह रही थी। डॉक्टर पॉल, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप पवन जी की बात से सहमत हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि भारत में कई दशकों से गरीबों के लिए, गरीब परिवारों के लिए सरकारी आवास योजनाएं चलती आ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने किन चुनौतियों को भापा या किन कमियों को भापा जो वो पूरा करने की कोशिश कर रही है, या कौन से ऐसे गैप्स थे जो इस पॉलिसी ने आइडेंटिफाई किया?
1: पहले भी सरकार जो है वो आवास योजनाओं पे काम करती थी। इस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, ठीक है, इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, साथ ही साथ जो सरकार एक ओवरऑल होलिस्टिक एटीट्यूड जो पहले था उसमें पूरा एक कल्चरल इमोशनल चेंज लाया, उसमें चेंज लाया, जिसमें बोला कि साहब ये आवास जो है, ये हमने कहा कि ये केवल एक स्केलेटन नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये उससे बढ़ के कुछ है। तो पहले भी हम लोग गांव में जाते थे, जैसे पत्रकार के तौर पे कहीं गए तो आपने कहा कि साहब घर बनाया क्या आपने, तो पता चला कि साहब उसका घर बना हुआ है और आधा बना हुआ है, आधा नहीं बना हुआ है। आधा घर बना मतलब आप समझिए कि सीने तक की दीवार आई, उसके बाद दीवार नहीं है, पैसा खत्म हो गया था। इस सरकार ने आके थोड़ा सा उसने बात को आगे बढ़ाया, उसको ज्यादा चेंज किया और अक्रॉस दी स्टेट्स, आप मध्य प्रदेश जाए, बिहार जाए, आप यूपी जाए, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी

0: होगी कि एक रूपता मिलेगी आपको प्रोग्राम में। अब वो जो आवास योजना है वो उनके लिए केवल छत नहीं है, आवास योजना उनके लिए सुरक्षा है, उनके लिए डिग्निटी है, उनके लिए उनका रिकॉग्निशन है। अब सोचिए कि एक फैमिली के लिए ये सब कितना जरूरी होता है, क्योंकि पहले हम इसलिए निहारिका इस पे बात नहीं करते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब हमें पता चलेगा, अच्छा सरकार ने रिकॉग्नाइज किया कि हम एग्जिस्ट करते हैं, कोई एक ऐसी सरकारी बॉडी है जो इस बात की चिंता कर रही है कि साहब हमारे बारिश हो रही है तो बारिश में हम केवल भीग नहीं रहे हैं, हमें रहने की जगह नहीं है। उसमें डॉक्टर साहब से आप मेडिकल पे ज्यादा बात करेंगे, जैसे फर्ज करेंगे हमारे पास घर नहीं है, घर नहीं होने से उसके हेल्थ कितना इम्पेक्ट होता था, ये लोग उसके विद्वान है उस पर ज्यादा बात करेंगे। अब फर्ज करिए किसी का घर है, सांप काट लिया, आप कल्पना करते हैं कभी गांव में जिनके घर में मिट्टी के हैं, छप्पर हैं, घास फूस के हैं, डॉक्टर साहब वहां सांप बैठा हुआ है, दूसरे जानवर बैठे हुए हैं, बिच्छू है, जगह नहीं है दो ईंटों के बीच में या दो मिट्टी के नली के बीच में
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं, घर केवल उनके लिए अभी आज की तारीख में रिकॉग्निशन है, प्राइड है, गौरव का भाव है, उसके अलावा एक ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, वो सब पूरा एक पूरा आस्पेक्ट है, वो पूरी चेन है। वो घर है इसलिए वो सबसे पहला तो उनको साहब अच्छा हमें घर मिला। अब जब घर देंगे अभी क्योंकि आगे जब आप बात करेंगे, आगे बिजली की बात करिएगा, सब सरकार के अलग अलग मंत्रालय निहारिका हो सकते हैं, वो सरकार के लिए मंत्रालय अलग हो सकते हैं, वो सारी मंत्रालय के जो चेन है वो जाके सिंपल एक फैमिली और एक व्यक्ति उसके अपलिफ्टमेंट कैसे कर रहा है वो अब से जो पहले होता था उसमें एक सी चेंज है। हम देखिए कोई सरकार कितना काम कर रही है इसका मूल्यांकन आपको एक समय के बाद करना पड़ेगा। और किसी पॉलिसी की जब हम लोग बात करते हैं कि साहब अच्छा है बुरा है जो भी है, तो आपको एक वक्त उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि साहब कितना फर्क पड़ा है। एक फर्क ये पड़ गया कि लोग कहते थे कि अच्छा घर हमें क्यों नहीं मिला, जिनको नहीं मिला उनको इस बात की दिक्कत नहीं हम कैसे रह रहे हैं, उनको इस भरोसा है कि साहब ऐसा है कि देयर इज अ स्कीम अवेलेबल जिसमें हमारे बराबर के आर्थिक समानता वाले लोगों को मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में बताता है कि साहब इसका मतलब है कि थोड़ा सा सोच में एक बेहतरी आई है, ये एक अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आवास योजना उनके लिए केवल वो नहीं है, वो मेंटल एंड फिजिकल बोथ, वो उनके लिए अपलिफ्टमेंट का है।
1: यानी काफी लेयर्ड टर्म है जब हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, और जब हम आवास की बात करते हैं तो वो केवल दीवारें नहीं है, उसकी काफी सारी लेयर्स हैं। आपके विचार क्या है सर इसके?
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि हर आवास में दो जरूरतें पूरी हों तो वो आवास पूरा है। एक है कि उसमें पानी की सप्लाई होनी चाहिए, पीने लायक पानी टैप से घर में आए, तो प्रधानमंत्री जी ने उसका कार्यक्रम बनाया, जल जीवन मिशन बनाया, हर घर नल जल की उन्होंने परिकल्पना करी। दूसरा है, और शायद उससे पहले आता है, कि टॉयलेट हो
1: जी,
2: घर में टॉयलेट हो, ये फंडामेंटल नीड है, एक ह्यूमन राइट वाली बात है ये। और हम इतना बड़ा काम हुआ है सिर्फ दीवार बनाने और टॉयलेट ही भूल जाना, या फंक्शनल टॉयलेट ही भूल जाना, या उस तरह का इस्तेमाल ना बता पाना उस हाउस होल्ड को, तो अधूरी बात है। तो अगर हम ये दो चीजें देखें, तो प्रधानमंत्री जी ने आपने कार्यक्रम में स्वच्छ भारत का अभियान के अंतर्गत गांव में 12 करोड़ टॉयलेट बनाने का संकल्प लिया और उसको सिद्ध करके दिखाया। उसके कितनी डायमेंशंस है, ईज ऑफ लिविंग है पहले, एक सिक्योरिटी है, और हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, खासकर जो उनकी लाइफ इम्प्रूव होती है, आप उसके बारे में सोचिए। तो जो घर में जो बदलाव आया है, ये एक मुद्दे को अगर देखें तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, जो काम पूरा नहीं हुआ था
1: जी।
2: और अगर मैं इसको स्वास्थ्य से जोड़ूं तो पब्लिक हेल्थ का जो हाईएस्ट प्रिंसिपल है वो अच्छा पानी है, और एक एनवायरनमेंट है जो कि सफाई वाला हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, और टॉयलेट आती है आसपास गांव में, सारा ओपन डिफिकेशन फ्री होता है कि बाहर शौच कोई नहीं जा रहा है, तो जो जीवाणु है वो मुंह के रास्ते से, गंदगी से मुंह के रास्ते से आके बीमारी नहीं पैदा करते। दस्त नहीं उनकी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसको स्वास्थ्य से जोड़िए। यहाँ की हम पढ़ते थे बहुत जमाने पहले कि हर बच्चे को 3 एपिसोड जो है वो डायरिया के होते हैं बचपन में, अब सब बदल गया है, नेग्लिजिबल हो गया है। और इसके फॉर्मल एस्टिमेट हमारे पास है कि जब ये सैचुरेट हुआ काम रूरल इंडिया में, तो 70,000 बच्चों की डेथ हर साल कम हुई है, क्योंकि डायरिया कम हुआ, इन्फेक्शन डिजीज कम हुई, ओरोफिकल रूट टूटा, और इसके अलावा न्यूट्रिशन बढ़ी, और ये सब होने के साथ साथ खाफ एनवायरनमेंट से, सिर्फ ये एक सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक नपीतुली बात है कि लाइव्स बच रही हैं, और उनको नहीं दौड़ना पड़ रहा, अपना पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा है कि डायरिया के लिए और दस्तों के लिए। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और अगर बढ़ते हुए हम इसको जोड़ेंगे कि हर घर

0: जल्द से कितना ईज ऑफ लिविंग हुई है वो भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा।
1: मेरा अगला सवाल इसी पर होने वाला था, जल जीवन मिशन और स्वच्छता अभियान पे। दोनों की मेरा ख्याल से एक साथ बात हम कर सकते हैं, और वो इसलिए कि इसका सीधा सीधा असर स्वास्थ्य पे पड़ता है और दूसरा असर वुमन एम्पावरमेंट पे पड़ता है। तो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे देश का एक चित्र रहा है जहां हम एक महिला को दूर जाते हुए देखते हैं मटका लेके पानी लेकर आने के लिए, और शायद ये जो काम था, ये जो कार्य था, वो उसे पढ़ाई से, रोजगार से दूर रखता था, और दूसरा इसका असर जो पड़ता था वो महिलाओं के स्वास्थ्य पे पड़ता था। तो जल जीवन मिशन आने से क्या ये चित्र बदलने लगा है थोड़ा सा?
2: कल्पना कीजिए, सुबह सुबह के 6 बजे हैं और गांव की महिलाएं 2 बाल्टी हाथ में लिए हुए, या पानी का कोई बर्तन जो जिसके बगल के जलाशय में गए, कुएं पे गए, या कोई और पानी का जो दूसरा स्रोत है उसके पास गए और लेके आए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वहां से लौट के आना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज हमने किताबें पढ़ी, बाद में हमने पत्रकारिता की तो हमने देश के अलग अलग इलाकों में देखा, राज्य का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सीन बहुत सारे इलाकों में थे। वो जाती थी तो क्या करती थी, वो जाती थी तो बेटी उसके साथ जाती थी, पति नहीं जाता था। पानी लाने में पुरुष का रोल नहीं होता था, पानी लाने में महिला का ही रोल होता था। वो लेके जाती थी, बेटी जाती थी उसके साथ, और वो पूरे 3 घंटे की यात्रा होती थी। निहार का जाना आना और तैयारी, ये वक्त ज्यादा लगता था, एनर्जी जाता था। इकोनॉमिक्स में बोलते ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
1: बिल्कुल।
2: तो आप देखिए कि क्या हालत क्या थी, जो सीन नहीं है जैसे बुंदेलखंड के इलाके में, मध्य प्रदेश के बाकी और इलाके में। यूपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत काम किया, जल जीवन मिशन पे। ये जल जीवन मिशन, इसमें जो सफरिंग कम्युनिटी थी वो महिलाएं थी, पुरुष नहीं था,
1: बिल्कुल।
2: टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मैं ये कहूंगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, महिलाओं के लिए टाइम खराब होता था, एनर्जी जाती थी, घर में बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता था, ये सब समय की बचत हुई। तो आप देखेंगे जल जीवन मिशन से न केवल क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज बिकम मच बेटर,
1: और शायद इसका जो प्रभाव है आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक नजर आएगा। इसका पीढ़ीगत प्रभाव शायद ज्यादा होगा, शायद हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने को इतना ना मिले, लेकिन आगे जाकर, जैसे आपने शुरू में कहा था कि हर पॉलिसी का मूल्यांकन करने के लिए कुछ वक्त हमें देना पड़ता है,
3: इतना प्रभाव तो जिस दिन पानी आ गया
2: उस
3: घर की तो दशा उसी दिन बदल गई। अब देखिए मैं इसके एक आंकड़े से जोड़ता हूँ, पवन जी आपने जो बातें कही है, एक स्टेज पे इसका जो स्पीड एंड स्केल है ना इसका अंक, मैं थोड़ा सा उभारना चाहूंगा। उसका मतलब कि स्पीड एंड स्केल सिर्फ प्रोजेक्ट का नहीं है, काम का नहीं है, जो चेंज हो रहा है। अब स्पीड की बात करो, एक स्टेज पे पवन जी जब पीक से चल रहा था, उस टाइम पे एवरी सेकेंड एक नया टैप वाटर नए हाउस होल्ड में पहुंच रहा था, एवरी सेकेंड। इसका थोड़ा सा अगर मैथ करते हैं, मल्टीप्लाई करिए, तो 86,000 टैप कनेक्शन एक दिन में लग रहे थे, 86,000 घरों में पानी लग रहा था। मैथ चाहिए
1: जी,
3: रिफ्लेक्ट कर आप सोचिए लाइफ कितनी बदल रही थी। 86 घरों के साथ में एस्टिमेट है कि 3.5 लाख लोग उसमें रह रहे होंगे, 3 से 4 से मल्टीप्लाई करिए आप सोचो। आज ये 3.5 लाख लोग पानी ला रहे हैं, जिंदगी और है, कल बदल गया, ये स्पीड है। तो इसके लिए वेट करने की और जरूरत नहीं है,
1: नहीं,
3: ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका स्केल देखिए, स्केल ये है कि जब शुरुआत हुई थी तो 19 करोड़ या 19.4 करोड़ रूरल हाउस होल्ड में से सिर्फ 3.23 करोड़ 17% घरों में टैप का पानी आ रहा था। आज हम ये बात ऑलमोस्ट 13 करोड़ तक पहुंच गए हैं, और वो 17% था, और आज हमें 79% 80%, 17 से 80 की जर्नी, और रोज बदलाव हुआ होगा उस घर में एक दिन के अंदर छोटे ड्यूरेशन में, ये सोचने वाली बात। जब यह मिशन पूरा हो जाएगा तो हमने लगभग 16 करोड़ घरों में पानी की सुविधा कर दी होगी। इसको अगर मैं देखूं कि इसका मतलब क्या है, 70 करोड़ लोगों की जिंदगी बदली, मल्टीप्लाई करिए आप, और पता कितनी पॉपुलेशन है, आप अमेरिका की पॉपुलेशन लो, उसके साथ में जोड़ो ब्राजील की 21 करोड़, अमेरिका 33, ब्राजील 21, और फिर जोड़ो इंग्लैंड की पॉपुलेशन 6 करोड़। आप ये सोचिए कि 5, 6, 7 साल के अंतर अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, उतने बड़े हाउसहोल्ड्स में उतनी बड़ी पॉपुलेशन को आपने पानी की, ये सर खास बात है जिस सरकार में, जो आप शुरू में बात करी ना कि अधूरे छूट जाते थे वो, तो इस स्केल पे ये काम हुआ है। और हेल्थ से जोड़ू अगर तो बिल्कुल क्लियर है कि साफ पानी आएगा, वाटर, सेफ वाटर एंड सैनिटेशन फंडामेंटल एसेट्स है पब्लिक हेल्थ के। पब्लिक हेल्थ शुरू ही वहां से होता है
1: जी,
3: सफाई हाइजीन पानी से ही शुरू होता है, पर्सनल हाइजीन से, इसी से शुरू होता है। तो उसमें 4 लाख बच्चों की डेथ, अगेन बच्चों पे प्रभाव ज्यादा पड़ता है, 4 लाख डेथ जो है वो 5 साल के दायरे में कम होंगी और हुई है। तो अगर हम इसको इस तरह से

0: देखें तो ये जो बुनियादी बदलाव है, उस घर की दशा बदल गई और उस घर के बच्चों की दिशा बदल गई
1: जी,
0: और उस घर के में एक माहौल की दिशा बदल गई। ये दो मिशन को हम इस स्वरूप में भी सर देख सकते हैं।
2: मेरा ख्याल है हमारी परिचर्चा में अब स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू किया गया था। इसको शुरू करने के पीछे का कारण और उससे आने वाले बदलावों के बारे में अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
0: स्वच्छ हो भारत, गांव स्वच्छ हो, हमारा आसपास स्वच्छ हो, तो ये तो हमारे पूज्य गांधी जी का एक सपना रहा है और उन्होंने देश को दशकों तक उस तरफ ले जाने का एक एग्जांपल पैदा किया। जैसे सर ने फिर कहा, सबने कोशिशें करी, कुछ कुछ कर पाए, कुछ कुछ अच्छा किया, कुछ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद इसमें एक टारगेट बांधा गया। टारगेट के साथ साथ एक स्ट्रेटेजी बनाई गई, फंड्स उपलब्ध किए गए, पॉलिटिकल कमिटमेंट जोड़ी गई, एक कंसेंसस बनाई गई और सबसे बड़ी बात, इसको एक जन आंदोलन बनाया गया। तो जन आंदोलन जब बना तो असली चेंज जो है तभी होती है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जबकि जन आंदोलन होता है। ठीक है, आइडिया बन जाता है, वो रिफॉर्म हो गया, फिर परफॉर्म करना शुरू किया कि चलो पाइपें बिछाओ, चलो ये टॉयलेट बनाओ, पानी लाइए, लेकिन जब जनता जुड़ती है उस तो वो हर घर नल जल में भी जरूरी है, पानी की समितियां हैं, वो क्वालिटी एश्योरेंस देखती हैं, उन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो इतने स्केल पे इस तरह से जो काम हुआ है तो वो काम अकम्प्लिश हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बजट दिया गया, पॉलिटिकल कमिटमेंट स्टेट ने भी दिखाई, राज्यों ने भी दिखाई, और उसको करने के लिए जो शैली बनी उसको एक हम बिल्कुल वो सिग्नेचर शैली की तरह मैं तो कहूंगा फॉर सोशली रेलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैव हैपेंड इन आवर कंट्री रिसेंटली।
2: और यदि मैं आपसे अगर पीएम उज्ज्वला योजना का जिक्र करूं तो इस योजना की ग्रास रूट लेवल पर बदलाव लाने में क्या भूमिका रही है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आवश्यक स्कीम रही है भारत सरकार की सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना की क्या भूमिका रही है ग्रास रूट लेवल के जो घर हैं उन तक बिजली पहुंचाने में?
3: जैसे डॉक्टर साहब ने स्वच्छता पे बात की, अभी आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप बैठे हैं ऑल इंडिया रेडियो में, राइट
2: जी।
3: और आरबीआई सामने बिल्डिंग है रिजर्व बैंक की, इस पूरे इलाके में अभी से 7-8 साल पहले, हो सकता है कि थोड़ा और पहले, लेकिन रफली 7 साल पहले आप एक भी टॉयलेट इस आसपास में नहीं था, एक भी नहीं था। जब मैं कह रहा हूं, अगर कहीं मेरी याददाश्त धोखा दे रही हूं तो अलग बात है, पर कहीं एक भी टॉयलेट नहीं था। अभी इस विसिनिटी में आपको ढेर सारे टॉयलेट अप एंड रनिंग, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के अच्छे स्टेटस में वो मिल जाएगा आपको, कोने पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सामने, आरबीआई के कोने पे, और थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको उद्योग भवन के कोने पे, फिर आगे जाएंगे तो आपको नेशनल मीडिया सेंटर के कोने पे, वगैरह वगैरह। ये अपने आप नहीं आया है, सरकार आपको टॉयलेट बना के दे सकती है, सरकार आपको घर से उठा के टॉयलेट तक नहीं ले जा सकती। देखिए कुछ चीजें समझने की, हर बात के लिए हम सरकार को बोले कि साहब आप ही जिम्मेदार हैं, ये सही तरीका नहीं है, ये रिजल्ट अच्छे आउटकम पे नहीं ले जाएगा। सरकार टॉयलेट बना के हमको दे सकती है, सरकार टॉयलेट में जबरदस्ती पकड़ के हमको नहीं ले जा सकती,
2: बिल्कुल
3: राइट। मेरा ये मानना है कि स्वच्छता में कम से कम आधा हिस्सा हमारा होगा, सरकार के पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हमारा हैबिट्स नहीं चेंज कर सकती, सरकार हमारा बिहेवियर नहीं चेंज कर सकती, सरकार को हमारे लिए एक टॉयलेट का प्रमोशन या जो भी स्वच्छता अभियान उसका प्रमोशन कर सकती है, लेकिन हमें उसमें शरीक नहीं करा सकती, वो उसमें हमारी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा जो आप पॉलिसी जिसकी बात आप कर रहे हैं, जैसे फर्ज करिए कि आपने शुरुआत की घर से, घर में स्केलेटन नहीं है, घर बनाया आपने, उसके बाद उसमें इंसान रह रहा है, उसमें घर में 24 घंटे में ज्यादातर टाइम में वहां पे महिलाएं देती हैं। इस बात को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं जब घर की बात कर रहे होते हैं तो, कि उसमें पुरुष नहीं है, उसमें महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं, उसके लिए सबसे पहले तो उसके लिए इतना बड़ा वो एश्योरेंस है। आप किसी पुरुष से पूछिए कि घर पे कितनी खुशी है आपको, और महिला से पूछिए घर की कितनी खुशी है, आप बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क पाएंगे दोनों के रिस्पॉन्स में, क्योंकि घर में दिन भर वो रहती है। उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए दिल की बात है, इज्जत की बात है, गरिमा की बात है, डिग्निटी की बात है, रिकॉग्निशन की बात है। अब घर है तो घर में साहब बिजली है, आधा काम आपका खत्म, घर पे बिजली है, दूसरे और काम कर सकते हैं आप, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, बिजली के और भी 10 उपयोग है, मिक्सी कैसे चलाएगा, मिक्सी से चलाएगा, पहले आप लगे रहते थे सिलबट्टे पे
2: जी।
3: आधा घंटा आपका हेल्थ खराब भी हो तो भी आप मसाला भी पीस सकते हैं, पहले वो काम नहीं कर सकते थे सिलबट्टा उठाने में ही बहुत मेहनत लगती थी। तो बिजली आ गई, पानी आ गया आपके पास, अब जिस स्कीम की बात आपने की है, जिस बिजली की बात हम लोगों ने की, आपके पास पूरा रसोई का जो पूरा नक्शा है, पूरा मैप है, पूरा रसोई का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदला हुआ है अब, और जो पूरा रसोई का लैंडस्केप बदला हुआ है तो ये पूरी, आपको अगर इकोनॉमिक समझना हो तो किसी के रसोई में घुस जाइए आपको समझ में आ जाएगा, और कोई तरीका दूसरा नहीं हो सकता। रसोई में घुस जाइए और इन सब पे प्रकाश डालिए, पानी है, रसोई है, बिजली

0: है, घर में बिजली है। तो आखिर में जो सबसे बात, वो डॉक्टर साहब इस पर प्रकाश डालेंगे, इनसे सवाल पूछिएगा जरूर तैयारी करके, कि बीमारी से सुरक्षा, महिलाएं जलावन लाने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती थी, जलावन अगर मान लीजिए सिला हुआ है, धुआं निकलेगा अभी आधा घंटा, तब जाके जलावन थोड़ा कड़क होगा, तब जाके वो जलेगा, तब तक वो स्ट्रगल कर रही होगी, बेटी को पीट रही होगी, बेटी पे चिल्ला रही होगी, झुंझला रही होगी, उसके बाद उसकी आंखें खराब होगी, अगर उसका लंग खराब है तो उसका विशेषज्ञ उनमें केवल आपको इंडिकेटिव बता सकते हैं, फिर वो खांसते खांसते तैयार करेगी खाना, टाइम उसका जाएगा, उसका मेंटल पीस लूज होगा वगैरह वगैरह, उस सूरत में रसोई में अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बची है। तो ये सामाजिक सुरक्षा से बढ़ के आप उसके देखिए बीमारी से उसकी सुरक्षा है। स्वच्छता अभियान में थोड़ी और सख्ती की जरूरत है, उसमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो जनता की कैटेगरी में, तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
1: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री

0: सारा पार्टिसिपेंट्स हम जैसे लोगों को करने की जरूरत है जो
1: जनता की कैटेगरी
0: में, तो ये फर्क दिख रहा है साथ में जमीन पे मेरे ख्याल से।
2: डॉक्टर पॉल, हमारी इस परिचर्चा में स्वास्थ्य का बार बार जिक्र होता है, स्वास्थ्य का बार बार मेंशन होता है, और स्वास्थ्य से रिलेटेड एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस स्कीम ने ग्रासरूट लेवल पर क्या चेंज इंट्रोड्यूस किया है और आरोग्य मंदिर का इसमें क्या रोल रहा है?
3: आयुष्मान भारत में दो मेजर प्रोग्राम लॉन्च हुए थे 2018 में और फिर दो उसके बाद आए। पहली जो आपने बात कही वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा आपने मेंशन फिर किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर है, उसको थोड़ा बाद में आते हैं। हम पीएमजे की बात, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि जब अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़े, या सेकेंड उसको हम कहें और तरह से तो सेकेंडरी टर्शरी केयर में हमें एक्सेस करनी है केयर, दाखिल होकर इलाज होना है, इन पेशेंट इलाज होना है, और पेशेंट वाला प्राइमरी केयर में जाता है, तो वहाँ जो सुविधाएं हेल्थ केयर की मिले, पहली बात एक्सेस हो, दूसरा है कि एक्सेस के साथ साथ मेरी जेब पे, मेरे अपने रिसोर्स पे, मेरी बचत पे बोझ ना पड़े
2: जी,
3: ये उसका मेन पर्पस है। अब सोचिए कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2004 के एस्टिमेट या 2014 के एस्टिमेट हम लेते हैं, आपको हैरानी होगी कि तरह तरह के एस्टिमेट कहते थे कि हमारे देश में 4 करोड़ से 7 करोड़ लोग 9 करोड़ लोग डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं बीमारी की वजह से जो गरीबी की रेखा उसके नीचे गिरते थे
2: जी,
3: इतने लोग, और वो किस तरह से, और इंडिविजुअल पे जाइए कि वो वुमन अकेली है, उसके बच्चा बीमार है, राइट, कैंसर हो गया मान लीजिए, भयानक बीमारी, घर में कोई नहीं है तो क्या होगा, या तो हम जाएंगे ही नहीं, बताइए कितनी दर्दनाक बात है वो
2: जी।
3: और गए तो घर बेच के जाएंगे, जमीन बेच के जाएंगे, गहना, तो ये सच्चाई है, सच्चाई रही है ये कि हमें हेल्थ केयर का खर्चा इतना बोझ पड़ता रहा है, जितनी भी कोशिशें हुई उसके बावजूद भी इतना बोझ पड़ता था कि हमारे जेब से खर्च करके हम बर्बाद होके इन पेशेंट केयर हम लेते थे। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने क्या किया कि 60 करोड़ लोगों के लिए 15 करोड़ के ऊपर हाउस होल्ड्स को लेके ये सुनिश्चित कर दिया गया कि उनके लिए हर परिवार को हर साल 5 लाख का जो खर्चा है उसके बराबर जो हेल्थ केयर मिलनी है, उसके एवज में जो मिलनी है वो 5 लाख का कवरेज हर फैमिली को, उन फैमिलीज को सुनिश्चित कर दिया गया है। तो एक परिवार को स्वास्थ्य के लिए, इन पेशेंट केयर के लिए 5 लाख का जो खर्चा है वो एंटाइटलमेंट की तरह उन बेनिफिशरीज को मिलेगा। ये बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है, इसमें मैं सिक्योर होता हूँ। और ये जब बीमारियां कवर हो रही है ना, उसमें कोई भी छूटी नहीं है, 1900 से ज्यादा प्रोसीजर्स, चाहे वो इंटेंसिव केयर है, चाहे क्रिटिकल केयर है, चाहे कैंसर केयर है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट है, या चोट लगी है उसका इलाज है, या नी रिप्लेसमेंट होना है वो है, या स्टेंट डलनी, ये सारे उसमें शामिल है। और किस व्यक्तियों के लिए, जो हमारे बॉटम के 40% लोग हैं, ये वो 15, इनको हम उस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इन परिवारों को। तो इतना ये बदलाव है, उसकी वजह से लोगों की, एक तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, और अभी जो NSSO का साइकिल है उसमें दिखाया गया है कि अब लोग छुपाते नहीं हैं, वो जाने शुरू हो गए। ये बिल्कुल कैशलेस है, आपको वहाँ पर एक पैसा ही नहीं देना है। और आप अगर इसको आंकड़ों में फिर एक बार कोशिश करो डालने की, तो हर रोज लगभग 90,000 से 1,00,000 लोग, व्यक्ति हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है इस कार्यक्रम के अंदर आजकल। अभी तक 12 करोड़ व्यक्तियों को इसका फायदा हुआ है, और उसमें मैं कहना चाहूँगा मेल फीमेल का प्रपोर्शन पाबंद एग्जैक्ट
0: जी,
3: जितने व्यक्ति मेल गए दाखिल हुए या जितने कार्ड मेल्स के बने उतने ही फीमेल्स के बने हैं, उनकी एक्सेस बढ़ी है। और अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो लगभग 2,00,000 करोड़ का जो खर्चा इस स्कीम ने उठाया है वो बोझ अदरवाइज जनता के ऊपर था, इन 40% लोगों पे था, और अब

0: है 70 और 70 से ऊपर के लिए एडिशनल, आप किसी भी तबके से हो उनके लिए भी 5 लाख का कवरेज उपलब्ध कर दिया गया है, चाहे अमीर गरीब कोई भी है, और उसके बियॉन्ड है ये, मतलब जो शुरुआत हुई थी उसके बियॉन्ड है, और उस 60 करोड़ नंबर के अंतर्गत है। लेकिन ये वो जो लोअर सोशल इकोनॉमिक वाले हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो एक ये ऐसा कार्यक्रम है और ऐसी ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ एक इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है जो कि आम जिंदगी को बहुत बेहतर करता है और लाइफ बचती है और खर्चा बचता है।
1: और शायद पब्लिक हेल्थ पर जो तनाव रहा है इतने सालों से, शायद वो भी काफी कम हो जाएगा इन कदमों की वजह से, इन स्कीम्स की वजह से।
0: इन स्कीमों से, ये दोनों स्कीम अगर हम जोड़ें
1: जी,
0: कि यहाँ तो सेकेंडरी टर्शरी अंदर, फिर प्राइमरी केयर वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हम स्कीम को जोड़ें, जिसमें कि एक नया एक जो हमारा सब सेंटर लेवल है 6000 की पॉपुलेशन के लिए, उनकी जो दवाइयाँ जो बढ़ गई हैं वहाँ पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट बढ़ गए हैं, और इसी तरह से जो एक्स्ट्रा वहाँ पे व्यक्ति हमारे लिए उपलब्ध हो गया है, उन सब की वजह से हेल्थ केयर जो है वो लोगों के पास, क्या ये काम पूरा हो गया है? नहीं। क्या ये काम पूरा परफेक्ट करना है? हाँ। लेकिन इन सालों में व्यवस्था बन गई है और इसको सक्सेस करना, जैसे पवन जी ने कहा, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, जनता को भी जुड़ना है, वो इन सुविधाओं का फैसला लें, वहाँ जाके बोलें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करिए, मेरा ब्रेस्ट कैंसर चेक करिए, मेरे 3 साल हो गए, या पिछली बार आपने देखा मेरा डायबिटीज मैंडेटेड है हर साल चेक होना, जाइए वहाँ पे जाके लाइन में लगिए, आप भीड़ करो, उसका इस्तेमाल करिए, वहाँ टेलीमेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध है। तो एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो एक्सेस बढ़ना एक फर्ज है उसमें, और एक्सेस हेल्थ का बढ़ने के साथ साथ जेब के ऊपर, मेरे पर्सनल खर्चे के ऊपर, मेरा फाइनेंशियली मुझे सिक्योर रहना है, ये दोनों को जोड़ते हुए एक बड़ा ही नोबल मिशन हुआ है, बहुत हद तक सक्सेसफुल है, बहुत हद तक आप भी आगे जाना है।
1: बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। पवन जी, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये नवंबर 2023 में स्कीम आई थी, जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं या जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस स्कीम की, इस कदम की, इस योजना की क्या भूमिका है?
2: देखिए, फिर इसमें केवल ग्रुप बदला है निहारिका, आप मतलब बाकी चीजें तो सबके लिए है, ये केवल आदिवासी इलाकों में है जिसमें सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, मेरे ख्याल से 72 या 75 कुछ जनजातीय ग्रुप थे जिनके लिए वो लॉन्च किया था, वो इसलिए क्योंकि वो और उनकी स्थिति और थोड़ी ज्यादा विकट है। तो ये बहुत नया इस्टेब्लिश किया है, इस पॉलिसी को थोड़ा सा और आपको टाइम देना पड़ेगा असेस करने के लिए, लेकिन सरकार का इंटेंशन वही है, सरकार की ऑनेस्टी वही है, सरकार का ऑब्जेक्टिव वही है, केवल ग्रुप लोगों का डिफरेंट है। कुल मिला के इस पे बात करिए कि देखिए, जन सेवा की कसौटी जो सरकार काम कर रही है, जो पब्लिक सर्विस सरकार कर रही है, उसका क्या पैमाना है? उसका पैमाना है कि आम आदमी की जिंदगी में ये कितना बदलाव आया। इसमें ये भी आम आदमी है जो अभी तक जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो बात हम कहते, वो सब आम ही आदमी के लिए है, राइट। इसमें ग्रुप केवल चेंज हुआ पड़ा है, पर यह सब आम आदमी, वो पूरा भीड़ जो है वो आम आदमी का है। आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, आपकी बातचीत का आज का जो है केंद्रीय तत्व यह है
1: जी।
2: और आम आदमी की जिंदगी में कितना बदलाव आया है और महिलाओं की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, मैं आपसे थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि जो सोसाइटी अपने 50% पॉपुलेशन को एक्सक्लूड कर दे, उसकी चिंता नहीं करे, उसको छोड़ दे अपने हाल पे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं कर सकती। इस सरकार ने आके वापस ये केंद्र में इस डिमांड को, इस अटेंशन को वापस लाया है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, तब तक आप किसी अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल।
2: कवरेज क्या है? नंबर एक देखिए, आपको पता चलेगा उसका कवरेज, उसका यूसेज क्या है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं मेजरमेंट और अल्टीमेटली टेस्ट करने की बात कर रहा हूं कि सरकार जब टेस्ट करेगी अब से 5 साल बाद तो क्या होगा, कवरेज कितना है, यूसेज कितना है, इसका आउटकम क्या रहा है, और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कल को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कल को ये नहीं कहेंगे साहब कि मैं ओपन डिफेकेशन में जाऊंगा, वो पूछेंगे कि हमारे घर में टॉयलेट क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, उसको पता है कि साहब ये दिस इज द न्यू नॉर्मल, घर में टॉयलेट चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं इसको नापने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा
1: जी।
2: इसीलिए बदलाव है, सरकार की सीरियस एफर्ट्स हैं, अलग अलग राज्य में उसके अलग अलग इंपैक्ट हो सकता है, मेरे ख्याल से आम आदमी की जिंदगी में

0: ढेर सारे बदलाव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे ख्याल से इसमें और बेहतर हो सकता है, इससे कोई इनकार करेगा क्या? कोई नहीं,
1: कोई नहीं। बहुत खूब, मेरा ख्याल है इसी विचार के साथ हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और धन्यवाद आपका, आप दोनों हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़े और हमारे स्टूडियो आए, थैंक यू सो मच।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 22वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा हर घर बेहतर जीवन। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य वीके पॉल और वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: अभी आपने सुना जन सेवा से देश सेवा का एपिसोड 22। आपको बता दें 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार, 8:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार और 8:10 पर मैं लेकर आऊंगी मधुरिमा। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जलंधर तो समाचार दर्शन दे एक नवे अंक नाल मैं चंचल शर्मा। अज की कड़ी विच तुसी सुनोगे भारतीय हवाई सेना दिवस, केंद्र सरकार दीआं योजनावां, विश्व मानसिक सेहत दिहाड़ा अते विश्व कपाह दिवस बारे माहरां डॉक्टरां ते लोकां नाल कीती गलबात। अज भारतीय हवाई सेना दिवस मनाया जा रहा है। इस साल दे हवाई सेना दिवस का विशा भारतीय हवाई सेना अटल अपेद अते स्टीक रखा गया है। हवाई सेना दिवस तो पहला दी शाम आकाशवाणी राही दिते गए एक विशेष संदेश च हवाई सेना मुखी एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि भारतीय हवाई सेना चौकसी अते दृढ़ वचनबद्धता नाल देश की रक्षा करने लई हमेशा तैयार रहती है।
2: The world today is witnessing a global gravitation towards empowerment of air power as preferred and first instrument of statecraft beyond regional diplomacy. As our nation navigates through the turbulent regional and global landscapes, it will increasingly depend on the IAF to provide effective response to emerging threats. It is our sacred responsibility to uphold the Indian Air Force as a credible, capable and formidable force always ready to meet the nation's expectations.
1: इस मौके रोजगार विभाग मोहाली दे डिप्टी डायरेक्टर सेवामुक्त मेजर हरप्रीत सिंह मानशाहिया ने हवाई सेना विच भर्ती होने बारे नुक्ते सांझे कीते। उधर पठानकोट दे सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो अध्यापक ब्रिज राज ने जानकारी दी।
3: फौज की नौकरी नौकरियां है एक जी पेंशनेबल सर्विस है फौज की ही रहेगी। भारतीय वायु सेना की गल करिए आप जो बच्चे आ 12वीं पास तो अगे ग्रेजुएट प्रोफेसनल डिग्रीज वाले सारे बच्चे इस एंट्री ला सकते हैं। नौजवान जो 12वीं पास करते हैं उन्होंने को साइंस सब्जेक्ट होने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उन्होंने आपका प्लस टू किया होना चाहिए है। परसेंटेज होंगी उन्हें नंबर ले हूं तो एज अ गरुड़ भारतीय वायु सेना के कमांडोज होंगे ने बतौर भर्ती हो सकते हैं। जो फाइटर पायलट्स ने रडार से भी काम करने वाले ने कम्यूनीकेशन से काम करने वाले ऑफिसर ने एनडीए तो भर्ती शुरू हो जाती है तो अगे टेक्निकल एंट्रीज ग्रेजुएशन पास करने तो बाद भी पायलट भी बन सकते हैं एंड बाकी दी सेवाओं भी एयरफोर्स भर सकते हैं।
4: है वो फौज है जो आसमाना चो देश की राखी करती है साडे एयरबेस की बहादुरी तक पूरे देश ने देखी है। मैं अपने नौजवान विद्यार्थियों को दसना चाहता है कि तुसी भी इस वर्दी का हिस्सा बन सकते हो। विद्यार्थियों करियर काउंसलिंग सैल स्थापित किया है जिस विच हर हफ्ते साडे अध्यापक ते करियर काउंसलर विद्यार्थियों डिफेंस नाल संबंधित पूरी जानकारी देते हैं। मुफ्त गाइडेंस अते लाइब्रेरी

0: फरीदा खानम दी आवाज च सुन रहे सी तुसी ये खूबसूरत गजल।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ सुनते हैं लता मंगेशकर दी आवाज़ च गीत।

लता मंगेशकर दी आवाज़ सुन रहे सी एक खूबसूरत गीत। आओ अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर दी आवाज़ छोड़ दे बेदर्दी छोड़ दे।

0: लता मंगेशकर दी आवाज च सुन रहे सी खूबसूरत गीत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। 8:10 हो रहे ने, आओ सुनते हां जन सेवा तो देश सेवा तक, पेशकश कीती है करमवीर करण ने। इस दा प्रसारण तुसी साडे आकाशवाणी बठिंडा, आकाशवाणी पटियाला ते आकाशवाणी लुधियाना तो भी नाल दी नाल सुनोगे।
1: पेश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ते आधारित आकाशवाणी लुधियाना दी एक विशेष पेशकश, पेशकश करमवीर करण।

0: एक विचार, कई बार एक निक्का जेहा विचार ही वड्डे सुपने दी नींह बन जांदा है। किसे नौजवान दे मन च ख्याल जन्म लैंदा है, क्यों ना अपना काम शुरू किता जावे। किसे छोटे व्यापारी दे मन च आस जागदी है, जे मेरा कारोबार कुछ होर वध जावे तां मैं होर लोकां नूं भी रोजगार दे सकदा।
1: पर सुपने दे नाल ही सवाल भी खड़े हो जांदे ने, कारोबार की शुरुआत किवें होवेगी, रजिस्ट्रेशन कित्थे करवाउणी है, केड़ियां मंजूरियां लोड़ींदियां हन, टैक्स नाल संबंधित कारवाई किवें पूरी करनी है, ते सब तो वड्डी गल की देश विच कारोबार करना हुण पहलां नालों सौखा हो रहा है।
0: अज असीं गल करांगे उस बदलदे कारोबारी माहौल दी, जिसनू अंग्रेजी च कहा जांदा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भाव कारोबार करन च सुगमता। ए विशा सिर्फ व्यापारियां

0: अभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है सिचुएशन, पहले से बेटर है बट स्टिल इट इज देयर।
1: जी, भारत के कारोबारी माहौल नूं अगले 5 सालां दे विच तुसी किस दिशा दे विच जांदा होया देख रहे हैगे हो? पर्टिकुलरली जिवें हुण तुसी दस्सिया गया आटो पार्ट्स दी गल कर रहे हो, हालांकि तुसी तां इंपोर्ट नहीं करदे हैगे, पर तुहाडी इंडस्ट्री दे विच बहुत इंपोर्ट हुंदा हैगा, चाइना दे नाल साडा कंपीटीशन है और इन्हां चीजां नूं मतलब इंपोर्ट तुसी एक्सपोर्ट तां करदे हो सकदे हैगे जी, ओह किस तरीके दे चेंजेस जिहड़े हैगे और उस दे नाल तुसी एह कंटेंपलेट करदे हो कि इंडियन इकोनॉमी नूं होर ज्यादा बेनिफिट तुसी हो सकते हैं?
0: सर डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि हम चाइना की मार्केट से कम्पीट करें, बट उसके लिए बहुत सारी चीजें अलाइन होनी जरूरी है। चाइना जैसी लेबर के में भी हो सकता है प्राइसेस कम है, या उनकी टैक्सेशन पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिस हिसाब से उनकी प्रोडक्शन है उसको हम कभी मैच नहीं कर पाएंगे उनकी कॉस्ट को। आज भी हम सिर्फ उनसे मटेरियल लेके अपने यहाँ पर असेंबल करते हैं, we are not able to manufacture each and every part. So maybe वहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम है कि उनको government help है या उनकी लेबर चीप है, whatever उनके laws होंगे उस हिसाब से। So हम अभी तक उस फेज में नहीं पहुँचे कि हम चाइना की मार्केट को compete कर पाए। In terms of imports अगर आप कहें तो हमारा जो रुपी है is falling day by day. So उस हिसाब से हमारे को वो बहुत महंगा पड़ रहा है import करना। हर चीज का बैलेंस बहुत बिगड़ा हुआ है, नो डाउट। हम लोग अपने आप को बहुत आगे पुश करते हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ना चाह रही है, बट आई फील कि देर आर सर्टन थिंग्स विच गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट बिजनेस हाउसेस सो दैट वी कैन डू वेल इन फ्यूचर।
1: जिवें तुसीं इह गल कीती हैगी है चाइना दे बारे च, गल कीती है असेंबलिंग लाइंस असीं बन गए हैगे
0: जी,
1: कि तुहानूं वी लगदा हैगा कि असीं ट्रेडिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे?
0: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें अपनी चीजों को बंद करना पड़ रहा है कि वहां से सस्ती मिलती है हम वहां से मंगा लेते।
1: रिचा जी थैंक यू वेरी मच, तुसीं समां निकालिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे बारे च गलबात कीती। आस करदे हैगे आंदा जिहड़ा समां है उह भारतीय इकोनॉमी वास्ते बहुत ही वधिया समां होएगा। जिवें असीं रिचा बस्सी दे नाल गलबात कीती ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ। ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਉਦਮ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ, ਨਵੀਨਤਮ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
2: ਵਾਚਕ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖਬਰਾਂ।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है

0: कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: जुर्माने ते कैद बारे फैसला समर्थ अदालत दे विवेक ते छड़ दिता गया है। टैक्सदाताओं नूं टैक्स भरन जां भुगतान विच देर लई वसूली व्याज ते अनुपातक जुर्माने दा सामना करना पएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दरां विच कोई बदलाव नहीं कीता गया। उन्हां अगे कहा कि कौंसल ने नोटिसां अते कार्रवाई लई सांझे मापदंडां दी सिफारिश कीती है। हुण 10,000 दी मुद्रा सीमा तों घट लई नोटिस जारी नहीं कीते जाणगे।
2: GST Council today has recommended
0: GST परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान

0: ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 10,000 ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
1: जीएसटी काउंसिल टूडे हैज रिकमेंडेड
2: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
1: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड
0: टैक्स दाताओं द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया नु भी सरल बनाया गया। रिफंड दावियों लिए प्रवानगी की म्याद 15 दिनों तो घटा के 10 दिन कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के यशोभूमि विखे 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस विच दूर संचार डिजिटल कनैक्टिविटी और तकनीकी नवीनता विच भारत की शानदार प्रगति नु दिखाया गया। इस मौके पर बोलदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस प्लेटफॉर्म ने भारत विच दूर संचार खेत्र ते डिजिटल कनैक्टिविटी के विकास नु देखिया। उन्होंने कहा कि इस मंच ने दूर संचार खेत्र विच भारत की तरक्की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले सालों दौरान मंच भारत की तरक्की ते इच्छावां नु प्रदर्शित करने वाले मंच वजों उभरिया है। श्री मोदी ने कहा कि 5G कनैक्टिविटी देश के हर जिले तक पहुंच गई है। उन्होंने अगे कहा कि भारत में हुण 5.5 लाख तो वध कार्यशील 5G कनैक्टिविटी बेस स्टेशन ने। उन्होंने अगे कहा कि डिजिटल कनैक्टिविटी ने जनता नूं सिख्या सेहत संभाल ते सरकारी सेवावां प्रदान करने विच सहायता कीती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज दूर दराडे पिंडां ते गरीब परिवारां दा हर बच्चा म्यारी सिख्या हासिल कर सकदा है।
3: ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारा एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। कोविड के दौरान जुलाई 2022 तक इस प्लेटफॉर्म पर 500 करोड़ से ज्यादा लर्निंग सेशन और करीब 6,000 करोड़ लर्निंग मिनट्स दर्ज हुए। अब हमारा प्रयास है हमारे जितने भी डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम है उनसे करीब 25 करोड़ स्टूडेंट्स को जोड़ सके। यानी साथियों, टेलीकॉम के क्षेत्र में जो रेवोल्यूशन आई है इसका भारत के नागरिक को सीधा सीधा फायदा हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 से 12 सालों में मोबाइल फोन ना सिर्फ आधुनिक संचार का माध्यम बने ने सगों चंगे शासन का एक महत्वपूर्ण साधन भी ने। वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने पिछले साल 863 अरब डालर की बरामद दर्ज की है और इस साल 1 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने का टीचा है। श्री गोयल ने यह गल अज नवी दिल्ली में 71वें CII पार्टनरशिप सम्मेलन के कर्टन रेजर को संबोधन करद कही। इस सम्मेलन अगले महीने की 12 से 13 तरीक को विशाखापट्टनम होगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत की बरामद में एक साल में लगभग 16% का वाधा होया है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर मौजूदा वित्तीय साल लिए अपने विकास अनुमान वधाए ने। उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि भारत 7% तो वध की दर नाल विकास करता रहेगा ते सब तो तेजी नाल वध रही वड्डी अर्थव्यवस्था बनिया रहेगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4 ट्रिलियन डालर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने की समर्था रखती है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। तो यूट्यूब पर साडा चैनल है @AIR जलंधर। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार स्टार्टअप्स सिक्ख्या संस्थावां खोजकर्तावां ते विद्यार्थियों की एक विशाल श्रेणी लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस तक पहुंच यकीनी बनाने लई वचनबद्ध है। अज नवी दिल्ली विच विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करदिया श्री वैष्णव ने कहा कि भारत हुण उन्हां देशां विचों इक है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस नूं अपनाया अते इसते असल लाभ प्राप्त कीते ने। उन्हां कहा कि तकनोलॉजी दे असल लाभ उदों ही मिलदे ने जदों इसकी वरतों उत्पादकता वधाउण, लागत घटाउण, आमदन वधाउण ते लोकां दे जीवन नूं बेहतर बनाउण लई कीती जाए। श्री वैष्णव ने कहा कि नवी तकनोलॉजी छोटे अते दरमियाने उद्यमां लई वी वड्डे मौके पैदा करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने दिल्ली, हरियाणा, बिहार और पश्चिमी बंगाल में एक बैंकिंग भर्ती धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। CBI ने एक CGST इंस्पैक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग परसोनल सिलेक्शन की शिकायत के आधार पर मामले में FIR दर्ज की गई थी। ब्यूरो ने कहा कि दोषी असली उम्मीदवारों की थान खुद भर्ती प्रक्रियाओं में बैठते सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के सबका मरहूम प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी आकी आबे नाल मुलाकात की। एक

0: ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 8:45 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ। 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9, 9:15 ਸਪੋਟਲਾਈਟ, 9:30 ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਡ, 9:45 ਤੇ ਇਨਸਾਈਟ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। और पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वस्तु और सेवाकर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
2: The council recommended removing arrest powers under GST.
3: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
2: From 25,000 to ₹10,000.
1: कर फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्यवाही के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है।
2: जीएसटी काउंसिल टुडे हैज

0: रिकमेंडेड।
1: जीएसटी परिषद ने आज नोटिस और कार्यवाही के लिए समान मानकों की सिफारिश की है। 10,000 रुपए के निर्धारित मौद्रिक सीमा से कम के नोटिस जारी नहीं करने की भी सिफारिश की है, जिसमें इस निर्धारित सीमा से कम के लंबित नोटिसों को वापस लेना भी शामिल है।
0: पेंडिंग नोटिसेस बिलो द सेड थ्रेशोल्ड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा।
2: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया।
3: डीप फेक कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है, ये भी हम देख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क पर काम करें। सरकारें, टेक्नोलॉजी कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी को इस फ्रेमवर्क से जुड़ना होगा। मैं जीएसएमए और दुनिया के टेलीकॉम ऑपरेटर से भी आग्रह करता हूं, आइए एक ऐसा ग्लोबल मैकेनिज्म बनाएं जो ऐसे फ्रॉड को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की।
4: 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि भविष्य का भारत कनेक्टेड रहे, भविष्य के भारत में डिजाइन रहे और भविष्य का भारत नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस एक दशक में जो संपूर्ण भारत की टेलीकॉम और डिजिटल फ्रेटर्निटी ने करके दिखाया है, वो शायद कई और देशों को सदियों लग जाती जो 10 वर्ष की अवधि में भारत ने करके दिखाया है।
2: श्री सिंधिया ने किफायती और सार्थक डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा सहायक नीतिगत ढांचे के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी को बिना किसी सीमा के हासिल करना चाहिए। स्केल विदाउट बाउंड्रीज विषय के अंतर्गत इस कार्यक्रम में पॉलिसी, रेगुलेशन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर विश्व विकास रिपोर्ट जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र AI और साइबर सुरक्षा, AI के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इसमें AI के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और लोगों को डीप फेक जैसे हानिकारक अनुप्रयोगों से बचाने पर बल दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग से समाज को अधिक लाभ मिलेगा।
5: वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक एक्सटेंसिव स्टडी की गई है, किस तरह से समाज के उन वर्गों को AI का बेनिफिट मिले जो नॉर्मली टेक्नोलॉजी से वंचित रहते थे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का एक मार्गदर्शन दिया है, उसी भावना के साथ कई ऐसे एग्जाम्पल, जैसे किसानों के लिए एक एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा हुआ है AI का, जिसमें 40% के आसपास यील्ड बढ़ी है और पानी का उपयोग कम हुआ और साथ ही साथ फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट भी कम हुआ।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों

0: पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि इसके केंद्र में निर्वाचन आयोग है और उच्च न्यायपालिका तथा वैधानिक एजेंसियां भी इससे अछूती नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: पत्र में चिंता व्यक्त की गई है कि भारत के संवैधानिक निकायों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये निहित राजनीतिक स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा अभियान है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत वैध है। उन्होंने बताया कि पिछला SIR लगभग 2 दशक पहले पूरा हुआ था और किसी ने भी उन संशोधनों को साजिश नहीं कहा था। हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय ने SIR को वैध और चुनाव आयोग की शक्तियों के दायरे में माना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे दावों की जांच पड़ताल और पुष्टि किए बिना अटकलों और अनुमानों को बढ़ावा ना दें। पत्र में संवैधानिक निकायों से दृढ़ रहने, पारदर्शिता बनाए रखने और राजनीतिक खींचतान से दूर रहने का आग्रह किया गया। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवैधानिक पद पर 25 साल का लगातार कार्यभार लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक रिकॉर्ड है। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 2 दिवसीय नमो बुक फेस्ट को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12-13 वर्ष में दुनिया भर में प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी व्यक्तित्व में काफी दिलचस्पी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि दृष्टिकोण नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसी पहलों के जरिए किस तरह कार्यान्वित हुआ।
2: वर्ष 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। यह देश में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन के हर स्तर पर समान अवसर और प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की थी कि वे वर्षों से लंबित महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए मिलकर काम करें।
3: आज पंचायतों में, नगरपालिका में, नगरपालिका बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार से राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि इस कानून के जरिए मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने का रास्ता खोल दिया है।
4: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित कर मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी को राजनीति और नीति निर्माण में निर्णायक भागीदारी देने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह केवल आरक्षण नहीं बल्कि महिलाओं के नेतृत्व एवं उनके सामर्थ्य पर विश्वास किया है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
2: नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। यह भारत की नारी शक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें देश के भविष्य को आकार देने में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। 2 दिन का विभागीय शिखर सम्मेलन आज शुरू हुआ। ये सम्मेलन सभी राज्यों के महिला और बाल विकास क्षेत्र के साथ राजनीतिक नेतृत्व और आधिकारिक संबंध की भागीदारी का साक्षी है। कनाडा की लेखिका एन कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें यह सम्मान साहसिक और कल्पनाशील लेखन के लिए मिला है। स्वीडिश एकेडमी ने स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा की। पुरस्कार राशि 1,02,00,000 स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 11.5 करोड़ रुपए है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: सेंसेक्स 1045 अंक गिरकर 71

0: 4593 पर बंद हुआ। निफ्टी 371 अंक लुढ़ककर 22232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले मामूली गिरावट के साथ 96.79 पर बंद हुआ।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में तपेदिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त स्वास्थ्य दल जोश टीम का शुभारंभ किया। ये भारत में तपेदिक उन्मूलन के प्रयासों में युवाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: मोदी जी ने इस बात की चिंता की है कि हर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में खुराक की व्यवस्था दी जाएगी और मुफ्त दवाई दी जाएगी, इसकी व्यवस्था की। अब हमारा काम यह है कि हम केस को डिटेक्ट करें और उनको दवाई तक पहुंचाएं और उनको दवा भी दिलाएं, खुराक भी दिलाएं, इस बात के लिए हम काम में जुटे। आज हमारे 55 जिलों में, लगभग सभी ब्लॉक्स में, 11 स्टेट्स में जोश की टीम को ये टास्क दिया गया है।
1: भारत की पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने आज महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स और तरुण मन्नेपल्ली पुरुष सिंगल्स में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने भारतीय पैरा तैराक और खेल जगत की जानी मानी हस्ती पद्मश्री से सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मुरगन ने कहा कि सत्येंद्र सिंह का साहस, दृढ़ता और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन का प्रेरणादायक सफर देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करता रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर अधिकारियों की गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त किया। अभियोग की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई। कर दरों में कोई बदलाव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग के कारण फोन और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना आवश्यक। डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार अगले महीने तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करने और डीप फेक से निपटने के लिए नियमों पर परामर्श पत्र जारी करेगी। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की और कनाडा की कवित्री एनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. GST Council scraps arrest power of tax officers, raises prosecution threshold to 5 crore from 1 crore rupees, no changes made to GST rates. Prime Minister Narendra Modi says, growing use of digital technology makes stronger phone and network security essential, calls for global framework to tackle deepfakes and cyber frauds. Government to release consultation paper on artificial intelligence regulations within next month to ensure AI safety and tackle deepfakes, announces Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav. 42 former judges write open letter expressing concern over attempts to undermine Election Commission, judiciary and other constitutional institutions. Canadian poet Anne Carson wins Nobel Prize in Literature for bold and innovative work blending classical tradition with contemporary forms. And in badminton, PV Sindhu sails into women's singles quarterfinal of Arctic Open at Vantaa in Finland. The GST Council, during its 57th meeting in New Delhi today, approved a series of measures to ease compliance for taxpayers. The decisions include scrapping the arrest powers of tax officers under the GST regime and raising the threshold for prosecution from 5 crore rupees to 1 crore rupees. Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement while addressing the media in the national capital this evening.
4: The council recommended removing arrest powers under GST. Council recommended raising the prosecution threshold from 1 crore to 5 crores and reducing the general penalty from 25,000 to rupees 10,000.
3: The punishment, whether a fine, imprisonment or both, will be left to judicial discretion in each case. A taxpayer who files a return late, makes a mistake or falls behind on payment will face recovery proceedings, interest and a

0: Dynamite. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए पोषण माह से जन भागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर नीना, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीना, बचपन में शरीर और मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और बचपन ही वो समय होता है जहां पर यदि किसी बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो उसकी शारीरिक वृद्धि, सीखने की क्षमता और समग्र विकास प्रभावित हो सकता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं बल्कि हर एक बच्चे को भोजन में अलग अलग पोषक तत्वों का संतुलन मिलना जरूरी है, जैसे कि प्रोटीन है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, खनिज पदार्थ, पर्याप्त ऊर्जा और स्वच्छ पानी, ये सारी चीजें जो बहुत ही आवश्यक होती है। तो पोषण माह जो हम मनाते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है और इस माध्यम से देश भर के लोगों तक पोषण को लेकर के किस तरह का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है?
2: धन्यवाद, ये एक बहुत अहम प्रश्न है। पोषण माह से हमारा उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो कि पोषण से जुड़े हैं, जिसमें कि लगभग 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूडेड हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर इस महीने में पोषण के बारे में जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं और एक्टिविटीज के माध्यम से सभी को इन्वॉल्व किया जाए। सो इस साल हमारे पोषण माह का जैसे उद्देश्य और थीम है, हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, और इसके अंतर्गत 5 थीम और सब थीम्स और इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि भोजन में विविधता और प्रोटीन की उत्तम और पर्याप्त मात्रा, जिसे डाइटरी डाइवर्सिटी एंड एडिक्वेट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह फ्रेश कुक्ड हॉट मील्स जो आंगनवाड़ी में दिए जाते हैं, जो खाना ताजा बना हुआ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, जो हम कह रहे हैं हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी, तो एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि सभी लोग कम्युनिटी में ओनरशिप लें और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी आंगनवाड़ी

0: तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो करें। और फिर न्यूट्रिशन फॉर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए पोषण और उनके साथ खेल के थ्रू अर्ली स्टिमुलेशन, जिससे कि उनका ना सिर्फ पोषण पर मानसिक विकास और ओवरऑल विकास पे भी काम किया जा सके। और लास्ट इस बार का थीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लगकर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर से बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई

0: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। तो एक महीना लग कर चाहते हैं कि इन्हीं सभी विषयों पर सभी के पास जानकारी जाए और सभी लोग हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी का थीम समझते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें भाग लें।
1: डॉक्टर नीना, जैसा कि आपने जिक्र किया अकाउंटेबिलिटी का, जाहिर सी बात है सभी की जिम्मेदारी बन जाती है, तो सरकार ने अपनी तरफ से पोषण अभियान शुरू किया जिसका कि उद्देश्य ये था कि अलग अलग विभागों और योजनाओं को साथ लाकर पोषण परिणामों में सुधार किया जाए और पोषण को जन आंदोलन बनाया जाए। तो सरकार ने पोषण अभियान से लेकर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 तक की कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। तो इन योजनाओं के माध्यम से देश में जो भी पोषण संबंधी सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें आम लोगों की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है?
0: हम लोगों की जिम्मेदारी जो हमारे थीम्स हैं उन्हीं में है, और खासकर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी देखभाल करना है, उनकी पोषण को सुनिश्चित करना है, उसमें उनके पति का, उनकी सास का, एक बहुत परिवार जनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। फिर साथ ही साथ जो सभी सेवाएं सरकार के अलग अलग विभागों से और मंत्रालयों से दी जाती है बच्चों के लिए और माताओं के लिए, उनमें उनको रजिस्टर कराना, उनको हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी को रजिस्टर कराना है, उनको जो भी टीकाकरण है वो कराना है, बच्चे की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में कराना है। तो जो ये सारा पोषण से रिलेटेड बिहेवियर्स हैं जिनको एक परिवार को अडॉप्ट करना है और माँ की और बच्चे की मदद करनी है, जिससे कि जो भी जानकारी उन्हें दी जा रही है, जो भी स्कीम्स उनके लिए हैं, उनको परिवार के जन और समुदाय के जन मिलकर पूरी तरह से अपनाने में और इम्प्लीमेंट करने में मदद करें, और जो भी उनकी सेवाएं हैं उनको ठीक तरह से यूज भी करें और उनमें दिए गए संदेशों में अमल और पालन भी करें।
1: डॉक्टर नीना, आपने जिक्र किया गर्भवती महिलाओं का, तो ये आम व्यक्ति आम लोगों को अगर समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऐसा क्यों जरूरी है, खासतौर पर जब हम बात करते हैं कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार की आवश्यकता क्यों होती है, इसका महत्व क्या है, और इसका जो होने वाले बच्चे होते हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या असर पड़ता है।
0: ये बहुत ही अहम मुद्दा है न्यूट्रिशन के तहत और पोषण के तहत। हम पहले 1000 दिनों की बात करते हैं, वो 9 महीने प्रेगनेंसी के, और उसके बाद पहले 2 साल बच्चे की विकास के हैं, इनको एक गोल्डन पीरियड कहा जाता है। और ये ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे का हर तरफ से चहुमुखी विकास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि हम अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं, और वो एक बच्चा सिंगल सेल से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूरी उसकी एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। सभी काम चाहे वो छोटे स्तर पर देख सकता है, सुन सकता है, खा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी ब्रेन की खास करके बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो इसी 9 महीने में होती है। और डिलीवरी के बाद भी जो ये पहले 2 वर्ष हैं सबसे ज्यादा गति से विकास होता है पूरी लाइफ में, उसके बाद सिर्फ एडोलेसेंस किशोरावस्था में ही इतनी तेजी से विकास होता है, वो भी इससे शायद थोड़ा कम होगा। तो ये जो एक गोल्डन पीरियड है जिसमें बच्चे की सभी चहुमुखी जिसे कहते हैं विकास हो रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है, उसकी कॉग्निटिव मानसिक ग्रोथ हो रही है, उसकी सोशल ग्रोथ हो रही है, तो इस पीरियड में अगर न्यूट्रिशन में कोई भी कमी रह जाती है तो उसका असर पूरी लाइफ लॉन्ग बच्चे के ऊपर रहता है। और कई कुपोषण हैं जैसे कि स्टंटिंग, जिसमें जिसे हम नाटापन कहते हैं, जिसमें बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है क्योंकि वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड मतलब पूरे 1000 दिन में उसको खाना ठीक से नहीं मिला है, तो वो एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन हो गया। तो उसका इफेक्ट जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, तब भी देखा जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनका स्कूल पूरा कर पाने पर, और इवन जब वो बड़े होकर कमाना चाहते हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक गोल्डन पीरियड है बच्चे के विकास के लिए, और हमारे लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि जो हम संपूर्ण न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट अगर इस समय देते हैं तो हमें मैक्सिमम जैसे कहते हैं रिटर्न्स वो मिलते हैं।
1: डॉक्टर नीना, हम लगातार पोषण की बात कर रहे हैं और सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने मोटे अनाज का भी लाभ आम जन तक पहुंचाने की बात कही है जिसके लिए तमाम प्रयास किए गए, हम उसे श्री अन्न भी कहते हैं। तो देश के हर एक परिवार तक यदि इस बात को पहुंचाने की कोशिश की जाए कि पोषण का एक बड़ा हिस्सा हमें मोटे अनाज से प्राप्त हो सकता है, तो इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह से इसका लाभ उठाया जा सकता है?
0: श्री अन्न जिसे आज हम मोटा अनाज कहते हैं वो हमेशा से हमारी पारंपरिक खाने पीन का हिस्सा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खासकर से हमारी जो डाइट है उसमें वीट और राइस, गेहूं और चावल का ज्यादा प्रभाव बढ़ गया है, ज्यादा इंटेक बढ़ गया है। मगर जो

0: मोटा अनाज है वो एक फाइबर में रिच है, विटामिन्स और मिनरल्स में रिच है। उसको अगर हम डाइटरी गाइडलाइंस ऑफ फॉर इंडियंस जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ICMR के तहत जारी की जाती हैं, उसमें कहा गया है कि जो आप सारा अनाज खा रहे हैं उसका 20% हिस्सा अगर मोटे अनाज से आए तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारे को फाइबर देगा, वो हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल देगा, वो हमारी ब्लड ग्लूकोज को बहुत तेजी से बढ़ने से रोकेगा। आजकल हम सिर्फ कुपोषण में कम न्यूट्रिशन से ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ओवर न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं कि उससे रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको भी प्रिवेंट करने में मदद करेगा। और ये सभी मोटे अनाज आसानी से मिल जाते हैं अगर हम देखेंगे तो, हमारी एक पारंपरिक जो डाइट है उसका वो हिस्सा रहे हैं, उनको अगर हम अपने पूरा दिन में कम से कम एक मील में अगर इंक्लूड करेंगे तो उसका हमें काफी लाभ मिल सकता है।
1: डॉक्टर रीना, हम पोषण और जन भागीदारी की बात कर रहे हैं, एक बड़ी समस्या हमने देखी है एनीमिया की, यानी कि खून की कमी भी देश में पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात हो, किशोरियों की बात है या फिर छोटी बच्चियों की बात हो या बच्चों की बात हो, तो एनीमिया की रोकथाम के लिए सही खानपान की क्या भूमिका है और जन भागीदारी की जब हम बात करते हैं यहां पर तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लोग या कम से कम बच्चियां या कम से कम महिलाएं इस समस्या से ग्रसित हों।
0: ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए एनीमिया की, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी जिसे कहते हैं हम आमाशा में और या हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, और इसमें खान पान का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो दो पार्ट में बनता है, एक उसका पार्ट है ग्लोबिन जो कि प्रोटीन होता है और हीम जो कि जिसमें आयरन होता है, मगर इसके अलावा इसको बनाने में विटामिन B12, विटामिन सी, काफी विटामिन का भी रोल रहता है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम डाइट खाएं उसमें विभिन्न तरह के खाने इंक्लूड किए जाएं, खासकर प्रोटीन क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसका आधा हिस्सा प्रोटीन से बनता है ग्लोबिन पार्ट। हम जो हमेशा से अनाज और दालों का मिश्रण खाते आए हैं कम से कम उसको 4:1, 4 हिस्से अनाज में 1 हिस्सा दालों का या नट्स का जो प्रोटीन रिच चीजों का होना चाहिए उसको इंक्लूड करना है, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आयरन की हमारा अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो उससे रिलेटेड उससे रिच बहुत ही लोकल फूड्स मिलते हैं हम अलग अलग जगह में, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको हमें अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना है। और उसके साथ विटामिन सी वाली चीजें अगर हम उसमें नींबू निचोड़ सकें, हम दालों को अंकुरित करके खा सकते हैं उसमें हम नींबू निचोड़ सकते हैं, और हमें खाने के आधे घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए जिससे क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, और हमें कीड़ों से बचने की दवाई जो होती है हर 6 महीने में बच्चों को देनी है। इसके अलावा सभी छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और धात्री महिलाओं के लिए और जो 15 से 49 ईयर्स की एज में, उनके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से IFA की टैबलेट्स दी जाती हैं, वो जिनको हर एक ग्रुप को किसी को हफ्ते में एक बार, किसी को रोज, किसी को हफ्ते में 2 बार खाना होता है, तो जैसा उनके लिए सुनिश्चित किया गया है उसको लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग एनीमिया को एक समस्या नहीं समझते, वो देख नहीं पाते शायद इसके कॉन्सिक्वेंसेस, गोली मिलने के बाद भी वो धरी रहती है और लोग खाते नहीं है, तो गोली का भी अपना महत्व है और साथ में एक संपूर्ण आहार इन लोगों को और पूरी परिवार को भी खाना चाहिए, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जन भागीदारी में जो परिवार के लोग हैं वो ये सुनिश्चित करें कि हमारी किशोरियां, हमारी बच्चियां, गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं ये गोलियां जरूर लें जिससे उनमें एनीमिया की प्रॉब्लम ना हो।
1: डॉक्टर नीना, आज हम पोषण को केवल एक सरकारी योजना न कह करके जन आंदोलन कहने की बात करते हैं कि ये जन आंदोलन है, जन भागीदारी है, परिवार हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, स्कूल हो, पंचायत हो या फिर स्थानीय समुदाय हो, तो इस अभियान में तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, आप ऐसा क्या कहना चाहेंगी कि सभी लोग मिलजुल करके इन समस्याओं से उबरने के लिए, हमारे बच्चों को उनसे उबारने के लिए प्रयास करने में और आगे आए।
0: हमारे देश में बहुत विभिन्नता है, खाने की बहुत रिचनेस भी है, बहुत चीजें अवेलेबल है, और हम कश्मीर में रहते हैं कि हम गुजरात में रहते हैं, अलग अलग तरह के खाने ऐसे देश प्रदेशों में अवेलेबल है, और ये एक बहुत पर्सनल मैटर भी है कि हम जो खाएं, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सभी परिवार और परिवार के जो बड़े हैं और मुखिया हैं वो खाना ऐसा सेलेक्ट करें जो कि पोषण के आधार पर सेलेक्ट करें और उसमें संपूर्ण ऊर्जा भी मिले, प्रोटीन भी मिले और सारे विटामिन और मिनरल मिले, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसको अगर हम समझें तो।

0: हमारी थाली जो होती है उसमें आधा सब्जी और फल से भरें और बाकी आधे में हमें बाकी सभी चीजों के, इसमें से बाकी आधे का भी एक तिहाई अनाज हो सकता है, मगर उसके अलावा प्रोटीन, थोड़े नट्स, थोड़ी अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हमें नॉन वेजिटेरियन फूड, थोड़ा ऑयल, चीनी और दूध से बनी चीजें ये लेनी है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है जान पाना, क्योंकि हम देख सकते हैं। और इस जन भागीदारी को कराने के लिए हर एक परिवार को ये देखना है कि उनके परिवार में किस तरह का खाना बन रहा है। बहुत ज्यादा वसा युक्त, सॉल्ट युक्त और शुगर
1: जी
0: युक्त जो आजकल बहुत प्रचलन हो गया है रेडी टू ईट फूड्स का और बहुत उसका, उनका हमें कम करके, बल्कि हमें अपने पारंपरिक खाने पे जिनको हम भूलते जा रहे हैं, जैसे मोटा अनाज की भी बात है, तो इन्हीं डायट्री प्रैक्टिसेस और इन्हीं चीजों को वापस सम्मिलित करें। खासकर गर्भावस्था और धात्री महिलाएं हैं या किशोरियां हैं या छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पे और अधिक ध्यान दें और सभी मिलकर ही इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हर परिवार को इसको सुनिश्चित करना है
1: जी
0: और अपनी पर्सनल चॉइसेस के बेसिस पे करना है, जो कि बिल्कुल संभव है।
1: जी श्रोता, आपको बता दें कि तकनीक के इस्तेमाल से आज के समय में पोषण सेवाओं की निगरानी और भी बेहतर हुई है। आज हमारे पास पोषण ट्रैकर है जो बच्चों की वृद्धि, पोषण सेवाओं और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की निगरानी करने में मदद कर रहा है। डॉक्टर नीना, हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पोषण माह से जनभागीदारी तक पोषण के संदेश पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नीना भाटिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

रेडीमेड 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश ने हुण तक दियां मुख खबरां।

वस्तु ते सेवा टैक्स जीएसटी कौंसल ने टैक्स अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार खत्म कर दिता है। कौंसल ने मुकदमा चलाउन की सीमा 1 करोड़ रुपए तो वधा के 5 करोड़ रुपए कर दिती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल कनैक्टिविटी ने सिख्या सेहत संभाल और सरकारी सेवावां तक पहुंचन नूं आसान बनाया है। भारत ने पिछले साल 863 अरब डालर की बरामद दर्ज की है और इस साल 1 ट्रिलियन डालर तक पहुंचन का टीचा रखा है। इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना टैक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप्स सिक्ख्या संस्थावां खोजकर्तावां और विद्यार्थियों लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी तक पहुंचन यकीनी बनाउन लई वचनबद्ध है। कनेडियन लेखिका एने कार्सन नूं साहित्य लई इस साल दा नोबल पुरस्कार दिता जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अज चंडीगढ़ विखे हुनर पंजाब अते फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल कीते जारी। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटाचू ने पठानकोट दियां मंडियां दा दौरा कीता कि हुण तक किसानां नूं खरीद के 1421 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पंजाब सरकार वालों पलके सरकारी स्कूलों विच करवाई जाएगी मेगा पीटीएम 25 लाख मापे होंगे शामिल। मुख्यमंत्री मामा तीया सत्कार योजना तहत हुण तक 3,722 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सीधे लाभपात्री महिलावां दे बैंक खात्यां विच ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नगर निगम चंडीगढ़ के एक सैनिटरी इंस्पैक्टर 14 लाख रुपए रिश्वत के मामले विच गिरफ्तार किया है। यह सी हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते

नाटकीय, उनके साथ हमीदाबाई चिकोठी, महासागर और पुरुष। पुरुष में 16 साल तक करता रहा, 1860 शोज किए मैंने उसके, तो तकरीबन 105 शो मैं बरस में करता था। लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का बहुत सा अहम जो वक्त था, मैंने उस नाटक के लिए दिया। कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, अगर मैं 16 साल नहीं करता वो, तो 16 साल में 4 साल के बाद अगर मैं वो नाटक छोड़ देता तो शायद अगले 12 साल में और कुछ नाटक कर सकता था। लेकिन शायद उस सक्सेस में मैं इतना अटक गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं लगातार करता रहा। लेकिन मुझे लगता था कि अभी आज लगता है कि वो गलती हुई और मैं कोई प्लेस कर सकता था। हाँ, मुझे वो प्यासा का गाना बड़ा पसंद है, बिछड़े सभी बारी बारी।

विजय तेंदुलकर का प्ले कर रहा था, तो उसने सई ने रिकमेंड किया मुजफ्फर को कि ऐसा ऐसा बच्चा है, उस तरह मुझे वो रोल मिला और मैंने किया। बहुत हालांकि बहुत छोटा सा किरदार था, लेकिन अपने आप को स्क्रीन पे देख के मुझे लगा था कि यार क्या कमाल, ये सुंदरम में लगी थी फिल्म। मैंने सोचा मैं फिल्म देखने जाऊंगा तो लोग मुझे देखते रहेंगे, परेशान करेंगे। पूरे थिएटर में 13 लोग थे, ऊपर हम 6 थे, बालकनी में एक सातवां आदमी था हमारे अलावा, शायद बारिश बहुत हो रही थी इसलिए कोई थिएटर में आए थे, और नीचे कुछ 5-6 लोग थे, कुल मिला के 13 लोग थे। लेकिन मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख के इतना खुश हुआ था, निकलने के बाद मुझे लगा लोग मुझे पहचानेंगे, कुत्ते ने भी नहीं देखा मेरी तरफ। हालांकि फिल्म मुझे इतनी मुझे तो बकवास लगी थी, लेकिन उसको अवार्ड्स बहुत मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स किस वजह से मिलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सच कहो तो मुझे वो फिल्म उतनी रास नहीं आई थी, लेकिन शायद ऐसे ही फिल्मों को इंटरनेशनल अवार्ड्स मिलते होंगे, मालूम नहीं। उसके बाद मैंने आज की आवाज़ की, और उसके बाद एन चंद्रा ने मुझे अंकुश का रोल ऑफर किया। हालांकि अंकुश में उन्होंने पहले दूसरा रोल ऑफर किया था, ये मैंने जो रोल किया वो रविंद्र महाजनी करके हमारे मराठी के एक एक्टर थे, उनको पूछा था, लेकिन उन्होंने 25,000 रुपये मांगे तो वो उनके पास थे नहीं, तो फिर एन चंद्रा ने मुझे पूछा तो मैंने ये रोल किया। लेकिन एन चंद्रा का मेरी ये इस करियर में फिल्मों में आने में बहुत बड़ा हिस्सा है, उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया होता तो शायद ही मेरी थोड़ी सी जो पहचान है वो हो पाती, तो एन चंद्रा का मैं आभारी हूँ उसलिए। वो शुरुआती मुझे उस फिल्म का वो इतनी शक्ति हमें देना दाता मुझे बहुत पसंद है। कहानी जो कहने जा रहे हैं, जो एक स्वाभाविक जो घट रहा है हमारे यहाँ हमारे देश में, हालांकि हर पूरे दुनिया में जो घट रहा है, पर टिप्पणी करना चाहते हैं प्रकाश झा, बेहतरीन कुछ कहना चाहते हैं, बेहतरीन मतलब ये कोई फिल्म का कैसे सब्जेक्ट हो सकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको फिल्मी बगैर फिल्मी बना के उन्होंने जिस तरह से कहा है मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इस फिल्म का हिस्सा होने का मुझे मौका मिला। बेहतरीन ट्यूनिंग है क्योंकि हमारा एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ, आज भी वो मुझे खाना खिलाता है, मैं उसे खिलाता हूँ, एक दूसरे को गाली नहीं देते, तो मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने जितने पैसे तय किए थे वो सब दिए मुझे, मैंने भी लिए, और आज भी एक दूसरे के प्रति आदर है। इस फिल्म की वजह से मुझे प्रकाश ने, अजय देवगन नाम का एक बेहतरीन इंसान है, एक्टर कैसा है खैर आप लोग जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन इंसान है, बड़ा नटखट है, बहुत मतलब हैरान करता है सेट पे सबको, लेकिन कमाल का इंसान है। मैं उसका आभारी हूँ प्रकाश का कि वो उसकी वजह से ये अजय मुझे मिला। बड़ा परेशान करता है बच्चा, प्रकाश को मैंने ऐसे ही बैठे बैठे बोल दिया तो उसने, प्रकाश ने कहा ये क्यों नहीं बनाता अपने बैनर के लिए, तो उनके बैनर के लिए मैं बना रहा हूँ। अब वो उसका नहीं रहा, मेरा भी रहा, मेरा हो गया उसका बैनर, तो उसके लिए बना रहा हूँ। मैं जब भी प्रहार देखता मेरा जो बच्चा है उसमें से छोटा सा मेरे बचपन का रोल उसने किया है। मैं सच कहता हूँ आज भी मैं अपने बच्चे को देखता हूँ मुझे वही बच्चा याद आता है, मेरे जो बड़ा हुआ मुझे मल्हार जो है वो मेरे जहन में ही नहीं बैठता, मुझे वही बच्चा याद आ जाता है। तो प्रहार के साथ मेरी जुड़ी हुई जो मल्हार के साथ जुड़ी हुई है, जिस तरह से मैंने उससे काम करवाया था, वो बेचारा रोता था, उसको रुलाने के लिए मैंने क्या किया, और आज भी वो मिलता भी है तो उसी तरह से मिलता है। करवाते यार, रो नहीं रहा था तो 2 चाटे लगा दिए मैंने, और वो इतना शॉट चाहिए था, और बाद में मैंने उसको गले लगाया तो मुझे ढकेल रहा था, कहता कि नहीं मुझे गले लगना, तूने मारा मुझे सबके सामने मारा, और भीड़ के बीच में मैंने उसके साथ वैसे बर्ताव किया था। खैर काफी अच्छी यादें हैं। वही बात कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था बहुत पहले, वो तो मैं कर नहीं पाया, वहाँ खड़की में, मैं पुणे में जाते हुए खड़की जो लगता है, जब भी कोई मैं जवान देखता था उनका सामान उठाओ या कुछ करो उनको सलाम करो जहन में था, लेकिन जिस तरह से उनकी इज्जत होनी चाहिए वैसे वो जो हमारे सिविल एरिया में जब आ जाते हैं तो उस तरह की उनकी इज्जत नहीं की जाती है, ऐसे मुझे लगता था। और फिर वो लगातार जब हमारे यहाँ वॉर होती है तब हम बड़े नारेबाजी करते हैं, कम हो जाता है, हम उनको भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं, उस वजह से वो जहन में था। उसके बाद मैंने मराठा लाइट इन्फेंट्री में स्पेशल परमिशन लेके काफ़ी वक्त गुजारा, वहाँ पूरी स्क्रिप्ट लिखी और बाद में ये फिल्म बनाई थी। मैं वैसे बहुत ही साधारण घर से था, उतने पैसे थे नहीं मेरे पास। ये फिल्म करने के बाद काफ़ी ऑफर्स आई तो पैसे बटोरने में मैं मशगूल हो गया, हालांकि ये गलत था, और अपना एक घर हो छोटा सा क्यों ना हो, फिर आदमी हूँ इंसान हूँ तो फिर वो लालचे बढ़ जाती है, फिर ये थोड़ा सा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, फिर थोड़ा ये भी चाहिए, अब जाके ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में जितना कुछ चाहिए था वो उससे बहुत कुछ ज़्यादा ऊपर वाले ने दे दिया है। एक जहन में कहानी थी तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एक बार आप सोच लो कि मुझे इतना चाहिए और वहाँ अगर रुक जाओ ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन हम उसमें इतने मशगूल हो जाते हो बटोरने में। अब किरदार ही

0: इतनी बाहर इतना डरावना नहीं हूँ, लेकिन वो क्या, जैसे एक बार एक किरदार अगर लोगों को पसंद आ जाता है, वो फिर उसी उसी तरह के किरदार में आपको डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर कैद कर देते हैं।
1: कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।

0: ना इश्क में हो जनरेशन गैप, हम मिलके करेंगे आज।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा जी, थोड़ी फरमाइश, जेकर तुसी भी इस प्रोग्राम दे विच शामिल होना चाहते हो, अपनी फरमाइश ते गीत सुनना चाहते हो ते सानू तुसी मैसेज कर सकते हो। नंबर है जी 9465536070। जेकर तुसी फोन कॉल दे जरिए साडे नाल जुड़ना चाहते हो ते नंबर नोट कर लो 0181 2342 173। साडे को बहुत सारे मैसेज आए हुए ने ते असी उन्हां दी फरमाइश देखते हैं की कहना चाहते ने। शिवाजी नगर वडाली देशमुख तो राजेश खोबरखेड़े, शिवा सागर, इंदिरा ताई, शकुली ताई, इन्हां ये कह रहे हैं कि सानू कोई भी अपने पसंद का गीत जिहड़ा सुना दो। अगला सानू मैसेज आया जी मलियान सरदना मेरठ तो, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन ते मास्टर जीवयम। मैसेज करन वाले ने अगले मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरात, नरगिस खातून। अगला मैसेज आया जी पिंड जाखोद राजस्थान तो शंभूदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक ते कुमारी पूजा। इन्हां दी फरमाइश है जी सानू नाना पाटेकर जी की आवाज़ दे विच कोई भी गीत सुनाया जावे जी, असी जरूर सुनावांगे। नाना पाटेकर जी का जिहड़ा सफ़र सीगा ना फिल्मां तो शुरू नहीं होया, उन्होंने पहला थिएटर विच अपनी पहचान बनाई ते शायद यही कारण सी कि जदों वो कैमरे सामने आए तो उन्हां दी जिहड़ी अदाकारी ना वो सानू बनावटी नहीं लगी, क्योंकि वो किरदार नू सिर्फ बोलदे नहीं सी सगों किरदार नू जिउंदे सी। ते आओ सुनदे हां नाना पाटेकर दा फिल्म क्रांतिवीर चोई गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कर अधिकारियों का गिरफ्तारी का अधिकार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली में आज जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि परिषद ने जुर्माने और कारावास की सजा का निर्णय सक्षम अदालत के विवेक पर छोड़ दिया है।
1: The council recommended removing arrest powers under GST.
2: जीएसटी परिषद ने गिरफ्तारी का प्रावधान हटाने की सिफारिश की है। परिषद ने अभियोजन की सीमा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की भी सिफारिश की है। इसके अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से कम की कर चोरी के मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। सामान्य जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से घटाकर 10,000 रुपए करने की भी सिफारिश की गई है।
1: From 25,000 to ₹10,000.
0: टैक्स फाइलिंग में गलती या भुगतान करने में विलंब करने पर करदाता को वसूली, ब्याज और आनुपातिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि परिषद ने नोटिस और कार्रवाई के लिए सामान्य मानकों की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को देखते हुए सुरक्षा ढांचा मजबूत करना बहुत आवश्यक हो गया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
3: आज जब टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इतना महत्व है, तब इससे जुड़ी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी चाक चौबंद करना बहुत आवश्यक है। फोन की सिक्योरिटी और नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये हम सभी की प्राथमिकता है। एक सामान्य नागरिक प्रोटोकॉल या आर्किटेक्चर की भाषा में नहीं सोचता, उसके लिए ट्रस्ट बहुत अहम है। जब उसको फोन पर आए तो उसे पता हो कि कॉल कौन कर रहा है।
0: श्री मोदी ने डीप फेक और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वैश्विक ढांचे का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी देश के हर जिले में पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G कनेक्टिविटी के संचालन के लिए आज 5,50,000 से अधिक आधार स्टेशन हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5G को विश्व में सबसे तेजी से अपनाई गई टेक्नोलॉजी बनाने में उपकरण निर्माताओं, दूरसंचार संचालकों और दूरसंचार क्षेत्र के हर कर्मी की सराहना की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विनियमन पर एक परामर्श पत्र अगले महीने जारी किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वादा विषय पर आज विश्व विकास रिपोर्ट 2026 जारी करने के बाद श्री वैष्णव ने कहा कि परामर्श पत्र एआई और साइबर सुरक्षा, एआई के लाभ और संभावित नुकसान पर केंद्रित होगा। 42 पूर्व न्यायाधीशों ने देश की जनता को एक खुला पत्र लिखकर निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के प्रयासों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने

निकल जया मेरा दिल माइया, सुरेंद्र कौर दी आवाज़ सुनिया जी एक पंजाबी नगमा। स्वागत करते हाँ प्रोग्राम दे विच अनारकली बाज़ार जगराओं तो सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका जी, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक दा। सुनना चाह रहे ने जी, अपनी फरमाइश भेज रहे ने गुरदास मान दी आवाज़ दे विच एक गीत की फरमाइश। बिल्कुल जी, अगला गाना तुहाडी फरमाइश ते शामिल कर लें जी। मुकेश बत्ता जी ने भी, नीलम बत्ता जी, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता सारे जुड़े हुए हैं, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत। तो पिंड चुगुड़ी जिला यमुनानगर तो रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनकीरत, मनराज जुड़े ने, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हाँ प्रोग्राम के। वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं, इन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम के। अगला गीत गुरदास मान की आवाज़ च प्रोग्राम चल रहा है। सौगात एक बार फिर तो मैं हरप्रीत सारे का करता हाँ स्वागत।

0: जी जिंदगी दे विच वाकई हरेक दा दिल किते ना किते लगा है ते इस दे उत्ते सवाल खड़े करने इस नू किसे ऐसे सवालां दे घेरे विच लैके आना शायद दिल दुखान दे बराबरी होने बढ़दा इस करके इस गल नू भुल जाना चाहिदा है ते क्योंकि लगी वाले जड़े ने ना उसकी हालत उसकी गल लगी वाले नू ही पता होंदी है। सुन रहे जी गुरदास मान दी आवाज़ संगीत प्रोग्राम चल रहा सौगात साढ़े पहले फोन कॉलर भी जुड़ गए ने साढ़े नाल आओ जानते उन्होंने हाल चाल कौन ते कितों गल कर रहे हैं। स्वागत जी बहुत बहुत
1: सत श्री अकाल जी।
0: जी मनजीत जी की हाल चाल?
1: बस ठीक है जी, तुसी अपना सुनाओ जी।
0: बहुत वधिया बहुत वधिया,
1: चलो वधिया चाहिए
0: जी। अज केड़ा गीत सुनाइए फिर?
1: गीत सुना दो बिंद रखिए दा जी।
0: सुजीत बिंद रखिए दा केड़ा गीत?
1: दिल ते पता नहीं तेरा क्या हो गया होना, मैं तो मुखड़ा देख के मर गया।
0: वाह जी वाह, लो सुनते हैं फिर सुजीत बिंद रखिए दी आवाज से गीत। शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत
1: बहुत बहुत भी शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद
0: जी।

सुरजीत बिंद्र की आवाज़ च गीत। अगली फरमाइश प्रोग्राम सौगात विच आई है जी। पिन साहब आना फाजिलका तो करण कंबोज चरण कंबोज रियांश।

प्रोग्राम चल रहा जी स्वागत मैं हरप्रीत एक बार फिर तो करता हाँ सब का स्वागत प्रीश कंबो जी तो सारा परिवार जुड़ा हुआ सी तिहां दी फरमाइश ते सुनिया ये गीत गुलाम साहब राही जी जुड़े ने मर मेरा जहां ताज मुहम्मद अंसारी जी अपने प्रोग्राम दे विच अदा भेज रहे ने बहुत बहुत स्वागत आजाद नगर लक्षर हरिद्वार उत्तराखंड तो पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया गीता राणी जी गगनदीप जी आरजू ते गुड्डू जी भी जुड़ चुके हैं सरहदी बाजार पटियाला तो जरन कुमार रहेजा कांता राणी जी डैनी नीतू ज्योति सजनी भी जुड़ चुके हैं सैक्टर 67 तो डी डी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप सिंह कालका तो जुड़े ने शिवचंद्र बजाज साहिल बजाज से बिट्टा बजाज स्वागत तुहाडा कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार राहुल रणजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल ते गुरशबद सिंह भी जुड़ चुके हैं उन्हों का भी स्वागत करता हाँ तो प्यारा जहा सुनेहा भेजा सानू जी अनीता संधु जी रोहित संधु जी गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवा शहर तो सुरेंद्र संधु तो उन्होंने सारा

0: हरजीत हरमन दी आवाज़ ते सुन रहे हैं प्रोग्राम सौगात। मैं हरप्रीत तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत करदा। साडे अगले फोन कॉलर जुड़े ने, जानते हैं कौन ते कित्थों गल कर रहे ने। स्वागत जी, बहुत बहुत तुहाडा।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन ते कित्थों गल कर रहे हो? जी बहुत बहुत स्वागत तुहाडा, दसो किहड़े गीत की फरमाइश तुहाडी? चिट्टे दंद हसनों नहीं रहिंदे, मोहम्मद रफी दी आवाज़।

इशारे नी लगे अखियां ते कदी करी ना इशारे नी हाय तेनू तकियां लोकां नू कश पंदे।

प्रोग्राम चल रहा जी, स्वागत स्टूडियो घड़ी मुताबक इस वेले समय जी 11:44 का। निघा स्वागत करते हाँ प्रोग्राम दे विच जुड़े ने सुखदेव सिंह जी, नरेंद्र कौर ते सन्नी मनी काका जनक नगर जलंधर तो। बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच तुहाडा। अगला गीत प्रोग्राम दे विच शहदुल सिकंदर ते अमर नूरी की आवाज़

चले जी प्रोग्राम स्वागत स्वागत करते हैं सुशील कुमार चिल्लाना पपी अते परीक्षा चिल्लाना पपी दी हट्टी पिंटदा खाना रोड़ा वाली हनुमानगढ़ तो सुन रहे ने प्रोग्राम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो लो अगला गीत सतेंद्र सरताज की आवाज़ तुहाड़ी नज़र।

काले नाग जही गुत लीड़ा कुंज वारे दा काले नाग जही गुत लीड़ा कुंज वारे दा तेरा नाक नी कबूतरी जी कुंज वारे दा तेरा नाक नी कबूतरी जी कुंज वारे दा पावे शीशे को

0: चलो जी, प्रोग्राम स्वागत दिन चढ़ गया है जी। नवा तरीक 9 ते शुक्रवार का दिन, स्वागत तुहाडा प्रोग्राम दे विच। एक बार फिर तो मैं हरप्रीत प्रोग्राम स्वागत निघा स्वागत करदा। जुड़े ने साडे अगले फोन कॉलर जी, स्वागत तुहाडा।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन ते कित्थों गल कर रहे हो?
1: महेश गढ़ मंडी हरजीराम मलोड़ तो सर
0: जी। बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम च। दसो जी, केड़ा गीत सुनाइए?
1: बब्बू मान दा लादा जी, टच वुड।
0: टच वुड वारी, दिन नवा चढ़िया ते बब्बू मान दे गीत नाल करदे हां शुरुआत, ते तुहाडा भी स्वागत बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: जी। लो सुनदे हां जी इहनां दी फरमाइश ते गीत बब्बू मान दी आवाज़ च।

चल जी प्रोग्राम स्वागत नहीं का स्वागत करता एक बार फिर तो सारे का फरमाइश आई है जी साढ़े को गीत दुपट्टा तेरा सत रंग का एकम त्रिशा अशिता अवीश जुड़े हुए ने जी हनुमानगढ़ राजस्थान तो लक्की जी भी जुड़ रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हाल चाल पूछ रहे हैं जी बहुत थोड़ा सुनेहा पढ़द हो हाल चाल हो गया ठीक तो लो सुनते फरमाइश तो ये गीत दुपट्टा तेरा सत रंग का

0: मिर्जा जंड हेठा मरे ते मरे
1: सुनहरी प्रोग्राम स्वागत अगला गीत हंसराज हंस ते श्वेता सेठी की आवाज़।

चला जी प्रोग्राम स्वागत दे इस आखिरी गीत नूं सुणांगे ज्योति ते सुल्ताना नूरां दी आवाज़ दे विच एक सूफी कलाम ते इस तों बाद प्रोग्राम होवेगा पंजाबी मेलोडियस गीत संगीत दे सिलसिला इस तरह ही जारी रहेगा। सारें दा बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा, हाथी तेरे छापा छले बाही तेरे चूड़ा। नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा, नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा।
1: कोट पेंट तो पाके फिर लिखन न जाने उड़ा, कोट पेंट तो पाके फिर लिखन न जाने उड़ा। वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा, वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा।
0: शर्म न कर दी झूठ बोल दी लेके छापा छले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा ककर ना पले, लुट के सब कुछ ले गई जट दा ककर ना पले।

दबके मारे यूं जो हुंदी थानेदार दी साड़ी, उत्तों चिट्टी ए दूध वर्गी अंदरों दिल दी काली, उत्तों चिट्टी ए दूध वर्गी अंदरों।

आसे पाने भी तू एवें मुँह कर लेना मोटा, लड़न मरन ते उतर आना जो पुतरिया छोटा, लड़न मरन ते उतर आना जो पुतरिया छोटा।

0: प्यार तेरे नाल गूड़ा वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल गूड़ा
1: नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा नी दस क्यों पाया सी प्यार जंगीरो गूड़ा
0: वे मैं कद पाया सी प्यार तेरे नाल।

0: दिवाजदी तड़ा वजदा कड़ोली वजदी कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया।

ताने मार सतौन ने चढ़िया सौन दिया कदों कमलिए हुंदिया रुत्तां रूप गवाउण दिया।

अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। राग प्रभाती विच उचारित भगत कबीर जी का यह फरमान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 1349 ते सुभायमान है ते सर्ब संजीवालता दे संदेश का ऐलान करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सर्ब सांझी बाणी है। कोई भी मनुख इस बाणी नूं जीवन विच अपना के भव सागर तो पार उतर सकता है। बाणी अनुसार सारी सृष्टि दे जीवां दा मां प्यो प्रभु आप ही है। सारे जीव उसकी संतान हन। उस सांझे बाप की कीर्ति करते हुए ही उस नाल इकमिक होया जा सकता है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी सोरठ राग विच उचारे हुए शब्द विच उस पिता की महिमा वड्याई करते हुए उसकी कृपा वास्ते जाचना करते हुए बेनती करते ने कि केवल एक प्रभु ही साडा पिता है। असी उसे एक पिता की संतान हाँ, बच्चे हाँ, बारिक हाँ, ते प्रभु तू ही मेरा गुरु है। ऐ मेरे मित्र सुन, मैं अपनी जिंद तेरे तो वारदी हाँ। मैनू प्रभु मिलन दी जुगत वाला उपदेश दे के राह दसो ताकि मैं दर्शन कर सका। सुन मित्र, मैं तेरे चरणा की धूड़ तो बलिहारे हाँ। ये मन तैनू ही समर्पित है। मैं आप जी दे चरण मल मल के धोवां ते अपना ये मन तैनू सौंप देवां। मेरे मित्र सुन, मैं तेरी शरण विच आ गया हाँ। प्रभु नू मिलन वाला उपदेश दियो। हुण कोई माण नहीं, बस तेरी शरण पिया हाँ, तेरी ही रजा विच राजी हाँ। ए मेरे मित्र सुन, ए जिंद जान शरीर सब अर्पित करके ही दर्शन संभव हो सकते हैं। मैं भी इस राह ते तुर पिया हाँ। प्रभु ने कृपा कीती है। संतां दे उपदेश सदका मैनू प्रभु दा नाम मिठा लगता है। दास ते गुरु ने कृपा कीती है। हुण सबनी थाई जात कुल तो मुक्त ते सर्व श्रेष्ठ प्रभु दे दर्शन दीदार हो रहे हैं। सरवण करदे हां लता मंगेशकर ते आशा भोंसले होरां द्वारा गायन कीता होया ये शब्द। एक पिता एकस के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन देह दिखाई।

0: एक पिता एकस के हम बारिक तू मेरा गुरहाई। इस शब्द गायन की तासी लता मंगेशकर अते आशा भोंसले होरा ने। श्री गुरु अर्जन देव जी गौड़ी सुखमणी महला पंजवां सिरलेख वाली बाणी दी 19वीं अष्टपदी दे 8वें पदे विच एक प्रभु दी उस्तत करन दा उपदेश दिंदे हन कि उस एक प्रभु दा जाप अते सिफत सलाह करो, उसे नू चेते करो अते मन विच वसाओ, उस एक प्रभु दी महिमा उसदे अनंत गुणा दा गायन करके करो, मन अते तन करके उसे दा ही जाप करो। ओ एक ही सबना विच आपे ही वर्त रहा है, इस सृष्टि उसे दा ही पसारा है, विस्थार है, उस एक नू आराध्या ही सारे पाप मुक जांदे ने, मन ते तन उस प्रभु दे रंग विच रत्ते जांदे ने, जिसने गुरु दी कृपा सदका उस एक नू जान लिया है, उस एक बारे जिसनू वी सोची आ गई है। सुनदियां प्रिंसिपल हरभजन सिंह होरां पासों वार्ता, एकस के गुण गाओ अनंत।
1: ए अनमोल बचन गुरु अर्जुन देव जी दी उचारण कीती हुई बाणी सुखमनी साहिब जी दी 19वीं अष्टपदी दे 8वें पदे विचों हन, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 299 ते सुभायमान हन। इन्हां बचना राही सतगुरु जी समझा रहे हन कि हे भाई, उस एक अकाल पुरख दे गुण गा जिस दे गुणा दा अंत नहीं पाया जा सकता। एकस तो भाव एक अकाल पुरख ही है। गुरु नानक साहब जी भी बाणी अंदर इसे गल ते जोर देंदे हुए फुरमाउंदे हन, साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। गुरमत दा प्रकाश होण तो पहला भाव गुरु नानक साहब जी दे आगमन तो पहला बहुते लोग एक परमात्मा नाल जुड़न दी थां परमात्मा दियां बनाईयां हुईयां चीज़ां नाल जुड़े हुए सन। जिमें कोई सूर्य की पूजा कर रहा सी, कोई चंद्रमा दी, कोई धरती दी, कोई तारियां दी, कोई दरियावां दी, कोई खास रुखां दी अते कोई खास पशुआं दी। पर गुरु नानक साहिब जी ने साडे सामने मूल मंत्र राही उस एक अकाल पुरख दे खास गुणा दा वर्णन इस तरह कीता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद। इस दे अर्थ विद्वाना ने इस तरह कीते हन कि अकाल पुरख एक है, उस वर्गा दूजा कोई नहीं। वो एक होने दे बावजूद सर्वव्यापक है, उसका नाम सदीवी होंद वाला है, वह सब का सिरजनहार है अते सब विच पूरिया होया है, वो डर अते वैर तो रहत है, उसकी हस्ती समय के प्रभाव तो रहत है, वह जूना विच नहीं आउंदा, उसका प्रकाश अपने आप तो ही होया है। इहो जिहा परमात्मा गुरु की कृपा नाल मिलता है। गुरबाणी ही मौजूदा समय विच साडा गुरु है। गुरबाणी ही सानू एक नाल जुड़ के उस दे गुण गायन करन दी हिदायत करदी है। जप बाणी विच गुरु नानक साहब जी फरमाउंदे हन, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई।

हर गुण गावो सदा सुपाई, मन चिंदे सगले फल पावो, जिय के संग सहाई। इस शब्द गायन की तसी पाई हरजिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने।

0: जन्म गवाया, जन्म गवाया, मने अंदर जन्म गवाया।
1: ओड़ी आपी ने भोग भोग कह हुए पसमण पौर सधाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया, अगे करनी कीरत बाची है बह लेखा कर समझाया, थो ना हो पाते हूँ सुनिया क्या रवाया, मन आंदा जन्म गवाया, मन आंदा जन्म गवाया।
0: दीन दया

बोले आल पाताल लटकिया के मंदड़े लटकिया के हार जित तन पाया नानका जित तन पा

कार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगया नानक जिन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सब।

0: दीपा लोआ मंडला खंडावर भंडाहा अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जाहा सो मित जाने नानका सरा मेरा जनता नान जंतु पाए कै संभाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दिबान पग नानक सचे नाम बिन क्या टिका गया तग महला पहला
1: लख ने किया चंगे आईया लख पन्ना परवान

0: पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरिया साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी खा पड़ी है जेते बर्स बर्स पड़ी है जेते मास पड़िया है जेती यार जा पड़िया है जेते सास नानक लेख एक गल और हो मैं चकना चाख मला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पवया ते तो लव्या बहु पेख किया दे दुख दिया सो विजिया अपना किया।

0: कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ ससंसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पोहे खार कूड़ कुड़े ने हो लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग तनहार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक खाने बेनती तुबाज कूड़ो कूड़ महला पहला
1: सच तम पर जानिया जाट ते सच्चा होए कूड़ की मल तरे तन करे अच्छा तो सच तम पर जानिया जा सच तरे प्यार नौ सुन मन रहसी है ता पाए मोक द्वार सच तम पर जानिया जा जुक्त जान जियो तरत का साध कब

0: सेब गवाही है, सेब गवाही है, मत थोड़ी सेब गवाही है।
1: थोड़ी दाढ़ मेंढा तली खाक जे मिले ता मस्त कलाई है, बूढ़ा लाल च छड़ी है, हुक्मना लखते आई है, हालत वेहो पाई है, जवेही कार कमाई है, जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेब गवाही है, मत थोड़ी सेब।

0: दारू सुख रोग भया जा सुख दाम न होय। तू करता करना मैं नाही जा हो करी ना होय। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता कल कला भरपूर हया। तू सच्चा सहस सवाल्यो जिन की सो पार पया। कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा।
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे। ओ नानक ताका दास है सो इंद्रंजन दियो महला दूजा।
0: एक कृष्ण सर्वदेव।

वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सतयुग जिन त्रूपर, श्री पहलाद भगत उदरी हस्त कमल माथे पर तरी, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म दे निस्तारो, गुरु जहाज खेबट गुरु, गुरबिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाइए, गुरबिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसे बनवारी, तिन लैना थाप जो जग तारी, लैने पंथ धर्म का किया, अमरदास भले को दिया, तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो, हर का नाम अखे निध अप्यो, अप्यो हर नाम अखे निध चों जुग, गुर सेवा कर फल नहीं, बंदे जो चरण सरन सुख पावे, परमानंद गुरमुख कहीन, प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी, आद रूप पोखन पर नंग, सतगुर गुरसेव अलख गत जाकी, श्री रामदास तारण तरनं। जे अमृत बचन बाणी साधु जन जपे, कर बचित चाओ आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन, परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पत्तक जे प्राणी, हर जन शिव गुरु ज्ञान रते, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कर, मुन बंछे जा की सरनंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की, श्री रामदास तारण तरनंग।

0: संसार अगर सागम तुलहा हर नाम करो मुख पाया जग जन्म मरण पक्का ये आई है प्रतीत प्रतीत है आई जन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोबर लालच काम क्रोध के वृथा गई अब लोक ब्रह्म परम सब छुटक्या देवे दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख कत जाके श्री रामदास तरन तरन जिन्हो बात निश्चल त्रो जाने ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक में जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडल ने सुरजे सत संगत परमानंद करो मुख मचा श्री गुरु साहिब साबो पर मन बच क्रम सेविए सच्चा।
1: वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग शोभ कैद मांझ शोध से दही पाद खाए जियो देख रूप अतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंदकार खेल पाहे जियो काल कलाम हुकम हाथ कहो कौन मेर सके ईश बम ज्ञान ध्यान तथ्य चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाग शरयो नख बदा जियो शंख चकर गदा पदम आप आप किया शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन तहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरुष सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरुष सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
2: पीत बसान कुंद दसान प्रयास सहित कंठ माल मुकट शीश मोर पंख चाहे जियो बेवजीर बड़े तीर धर्म अलख गम खेल गया अपने उचाहे जियो कथ कथा कथी ना जाए तीन लोक रहा समाए सुत है सिद्ध रूप तरयो साहन कैसा जियो सत साच श्री निवास आदि पुरुष सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन तन गोबिंद दियो अंगद अनंत मूरत जितारी अगम ज्ञान रस रसियो हियो गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करत्यायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो।
3: सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो बलहै शलन सबल मलन भगत फलन कान कुर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवन दुर्त दवन सकल भवन कुशल करण सर्व भूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म करम मछ कछ हो ब्रहा जमुना क्या कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो।

सेव अलख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणंग।

निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सके को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगनत, तिनको मोह पया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई रिजक दिया,

आपे जल आपे थल थमन आपे किया कट कट बसा आपे नर आपे फुन नारी।

0: की रत की गोरे राम दास राखो सरनाई।
1: सो कहौ टल गुर सेविऐ अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसिऐ गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी नूर अर साहो कुर साहो चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते साह

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सो ही है सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहद साहु जिस पास बैठिया सो ही है सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत् सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा खोजत खोजत खोज बिचार्यो राम नाम तत् सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हारे रस पीवह पुरख ज्ञानी सोने सोने महा त्रिपत मन पावे साधु अमृत बानी रहाओ मुक्त भुगत जुगत सच पाइए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता।